अभी आप अशोक खोसला की आवाज़ में ये भजन सुन रहे थे। श्रोताओं, भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं भाई देवेंद्र सिंह व साथियों की आवाज़ों में ये

0: भाई देवेंद्र सिंह व साथियों के गाए इस शब्द के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें दुधारू गायों के पोषण के संदर्भ में। ये तो हम सब जानते हैं कि जिस तरह से हमें स्वस्थ रहने के लिए और वृद्धि करने के लिए संतुलित भोजन की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से पशुओं को भी संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। संतुलित आहार के अभाव में पशुओं से वांछित उत्पादन हम प्राप्त नहीं कर पाते और पशुओं का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। पशुपालन से हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हमें आर्थिक तौर पर फायदा हो। एक उच्च संकर नस्ल की गाय से करीब 20-25% दूध अनुवांशिक लक्षणों के कारण मिलता है, यानी पशुओं की नस्ल ऐसी होती है जिससे कि दुग्ध उत्पादन ज्यादा होता है। लेकिन 75-80% दूध का उत्पादन संतुलित आहार पर ही निर्भर करता है। यदि संतुलित आहार में किसी प्रकार की कमी होती है तो दुग्ध उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ता है। सर्वेक्षणों से पता चला है कि हमारे इन द्वीपों में दुधारू पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिल पाता और इसका सीधा असर हमारे यहाँ के दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। किसान भाइयों, पशुओं के संतुलित आहार से वंचित रहने का एक मुख्य कारण है हमारे यहाँ पर पशुओं के लिए चारे की फसल का ना उगाया जाना। संतुलित आहार का मतलब होता है पशुओं को एक दिन में इतना आहार दिया जाए जिसमें कि वो सभी पोषक तत्व मौजूद हो जो कि पशुओं की वृद्धि और उत्पादन के लिए जरूरी है। एक पशु को एक दिन में उसके पूरे वजन के 2-3% सूखे पदार्थ की आवश्यकता होती है। अर्थात यदि एक पशु का वजन मान लीजिए 300 किलो है तो उसे एक दिन में कम से कम 6-9 किलोग्राम सूखे पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसको हम 1/3 भाग दाने के रूप में एवं 2/3 भाग धान के पुआल या किसी अन्य चारे के रूप में देकर पूरा कर सकते हैं। यदि अच्छे किस्म के हरे चारे जैसे बरसीम, ल्यूसर्न, कुट्जू आदि का प्रयोग हम करेंगे तो जानवर को किसी अन्य प्रकार के दाने देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसे पर्याप्त मात्रा में सूखा चारा जैसे कि धान एवं पुआल आदि खिलाना चाहिए। इससे हरे चारे के रूप में दी गई जो दलहनी फसल है उससे प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति तो होगी, साथ ही सूखे चारे से ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उसकी भी काफी हद तक आपूर्ति हो जाएगी। किसान भाइयों, हमारे इन द्वीपों में धान एक मुख्य फसल है, अतः जानवरों का संतुलित आहार बनाने में पुआल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जो भी आहार हम बनाते हैं वो सीधा पुआल से संबंधित होता है। यदि हम जानवर को पुआल खिलाते हैं तो यह जानना आवश्यक है कि उसके साथ कितना हरा चारा या दाना दिया जाए। जानवरों के लिए संतुलित आहार बनाने में इस बात पर मुख्य रूप से ध्यान रखना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के जानवरों में संतुलित आहार की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जब हरा चारा उपलब्ध हो तब दुधारू गाय के लिए 30 किलोग्राम घास एवं 1 किलोग्राम संतुलित दाना प्रति 2.5-3 लीटर दूध उत्पादन के लिए देना जरूरी होता है। गर्भवती गाय के लिए 30 किलोग्राम चारा एवं 1 किलोग्राम दाना प्रति 2.5-3 लीटर दूध पर तथा गर्भावस्था के लिए 1 किलोग्राम पूरक आहार दाने के रूप में देना चाहिए। जहां पर पुआल उपलब्ध हो वहां सभी जानवरों को 6 किलोग्राम पुआल के साथ साथ 3-5 किलोग्राम हरा चारा छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खिलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पहले बताई गई विधि के अनुसार पशुओं को दाना भी साथ साथ देते रहना चाहिए। दाना या चारे के साथ प्रतिदिन 20 ग्राम नमक व 10-15 ग्राम खनिज मिश्रण भी देना चाहिए। इस प्रकार से सुझाई गई बातों को ध्यान में रखकर अगर आप दुधारू गायों का पोषण करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा लाभ और उत्पादन प्राप्त होगा।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade. But today, trust has become just as important alongside trade.
2: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
1: Mr. Modi further said the country is investing across sectors that will drive growth, innovation and opportunity for generations to come. He said that this is a defining period in India's journey where aspirations are reaching new heights. Mr. Modi said that at the G7's meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. Prime Minister said India's message to the G7 summit was clear, that global governance will only be effective when it is inclusive. Earlier, Modi was welcomed with the message Bonjour Modi or Hello Modi and chants of Bharat Mata Ki Jai. The Indian community in France gathered in large numbers chanting slogans of Modi Modi and Bharat Mata Ki Jai. Prime Minister Narendra Modi has left for New Delhi after concluding his successful and productive visit to Paris, marking the third leg of his two-nation visit to France and Slovakia. In a social media post, Mr. Modi said that the India-France friendship will become even stronger in the times to come as he concludes his visit to France. Prime Minister said, "This visit to France has been extensive when it comes to engagement and outcomes." French President Emmanuel Macron recorded a special farewell video message in Hindi for PM Modi as he was wrapping up his trip to France.
3: Priye Mitre Narendra, Mujhe Bahut Khushi, Hui Aapka Nice, Evian, or Paris. Main ise saath daure ke liye swagat karte. France aur Bharat ki dosti amarai. I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care.
1: President Draupadi Murmu will attend a program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. After that, she will travel to Rairangpur in Odisha, where she will inaugurate several development projects. These include a medical camp organized by AIIMS Bhubaneswar, a mega rural piped water supply scheme for mining affected villages, the Matru Shakti Bhavan of the Brahma Kumaris, and a special circuit house. As part of the next phase of her visit,

0: President Murmu and Prime Minister Narendra Modi will visit Paharpur village in Odisha's Mayurbhanj district tomorrow. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has approved large-scale procurement of pulses and oil seeds at the minimum support price for four states. The ministry said that the procurement will be undertaken under the price support scheme in Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. Uttar Pradesh has emerged as the biggest beneficiary under the approvals for the summer 2026 season. In Gujarat, procurement of 18,250 metric tons of moong has been approved for the summer 2026 season. The minister also approved an enhancement in the moong procurement limit for Tamil Nadu under the Rabi marketing season 2025-26 from 885 metric tons to 990 metric tons. Mr. Chauhan approved procurement of 2,115 metric tons of moong during the summer 2026 season for Haryana. In FIFA World Cup, Czechia were held 1-1 by South Africa in Group A match at the Atlanta Stadium in United States last night. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान की यात्रा पर आज रात 8 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल 20 तारीख को सवेरे 8 लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान आज ही दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान आज ही दोपहर बाद 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी आज ही दोपहर बाद 3:30 पर। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी हडबे आज दोपहर बाद 2:30 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल 20 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानीचंगा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज सवेरे 7 श्री विजयपुरम से चलेगा और इसकी वापसी कल 20 तारीख को सवेरे 7 डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। और अब सुनिए कल शनिवार 20 तारीख को जाने वाले जलयानों के बारे में। एमवी भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल शनिवार 20 तारीख को रात 8 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान रविवार 21 तारीख को दोपहर बाद 2 डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप और लॉन्गलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल शनिवार 20 तारीख को प्रातः 6 श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा कल शनिवार 20 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 20 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतल्ला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल सवेरे 7 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान अगले दिन रविवार 21 तारीख को सवेरे 7 रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11 श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा।

और स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे। एमवी हडबी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी बाराटांग कल 20 तारीख को दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। और एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 20 तारीख को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान अगले दिन 21 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा।

0: अभी आप जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। आप प्रस्तुत है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम के आज के सफर में मैं हूं आपके साथ सीमा। जीवन एक निरंतर यात्रा है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक अनुभवों और परिस्थितियों से गुजरता है। इस यात्रा में वह चलते चलते सीखता है, आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए कहा जाता है, जीवन चलते रहने

0: भगवान।
1: इसमें मरता जा मित्रा,
0: तत्ता करता जा मित्रा,
1: किसी से झुकाता चल मित्रा,
0: जग पर चाहता जा मित्रा।
2: चलते चलते इस जीवन में हमें कई लोगों से मिलने, नई बातें सीखने और अपने अनुभवों को बढ़ाने का एक मौका मिलता है। चलना केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि आत्म विकास का भी माध्यम है। दोस्तों, हमें हर कदम कुछ ना कुछ नया सिखाता है, इसलिए दोस्तों चलते रहिए। आज दुख है तो कल सुख होगा, आज कुछ नहीं है पर कल बहुत कुछ होगा। मंजिल तो चलते चलते ही मिलेगी।

दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि प्रकृति भी हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है? नदियाँ बहती रहती है, सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त होता है, तथा पृथ्वी लगातार घूमती रहती है। यदि प्रकृति रुक जाए तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में निरंतर चलते रहना चाहिए। चलते रहने का अर्थ यही है कि हमें कभी हार नहीं माननी है।

0: और अब श्रोताओं, चलते चलते आज की मुलाकात यहीं तक। फिर मिलेंगे नई बातों और नए एहसासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए रामचरित मानस गान की 274वीं कड़ी।

वानर सम्राट सुग्रीव की अपने चरणों में भक्ति और समर्पण देख श्रीराम ने उन्हें भरत की भांति अपना लिया और उनसे वे सभी उपाय करने का आग्रह किया जिससे सीता का समाचार प्राप्त किया जा सके। सुग्रीव के आदेश पर वानरों की विशाल सेना एकत्र हो गई। पार्वती को यह कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, वानरों की वो सेना मैंने देखी थी। उनकी संख्या इतनी थी जिसकी गिनती करने वाले को मूर्ख ही कहा जा सकता है। सभी वानर श्रीराम के सम्मुख आकर सिर झुकाते हैं। प्रत्येक वानर से श्रीराम उसकी कुशल क्षेम पूछकर उसे कृतार्थ कर देते हैं। सुग्रीव ने असंख्य वानरों की विशाल सेना को सभी दिशाओं में जाकर सीता जी को ढूंढने का आदेश दिया और इस काम के लिए एक माह का समय दिया। अपने राजा के सामने एक बार फिर सिर नवाकर वानर श्रीराम का स्मरण करते हुए विभिन्न दिशाओं में चल दिए। सबके अंत में जब पवन सुत हनुमान ने सिर नवाया तो श्रीराम ने उन्हें अपने पास बुलाकर अपने कर कमलों से उनका सिर स्पर्श किया तथा अपना अनन्य सेवक जानकर उन्हें अपनी अंगूठी उतार कर दी। बोले, सभी प्रकार से सीता को समझा बुझाकर शीघ्र लौट आना।

अभी आप रामचरितमानस गान की 274वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, वतन के गीत कार्यक्रम के तहत लीजिए अब सुनिए कुछ देश गान।

अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद 7:00 सुनिए जन सूचनाएं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा 7:05 पर। 7:15 पर आप देश गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे देश रागनी, जबकि आप विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिस्रे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर आप आनंद ले पाएंगे कुछ फिल्मी गीतों का। 8:30 पर सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में द्वीपों के होटेलियर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गिरीश अरोड़ा से ली गई भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी, पिछले 12 साल में सरकार की उपलब्धि। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का लुत्फ उठाइए 9:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर पंडित जसराज का हिंदुस्तानी शैली में गायन आप सुन पाएंगे। संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग आप सुन सकेंगे 10:00। दिन के 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1310वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। निकोबारी कार्यक्रम में दिन के 11:30 पर आप सूचनाओं के अलावा कुछ लोकगीत सुन पाएंगे। तेलुगु कार्यक्रम में दोपहर 12:00 युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम होगा युवाणी। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। दोपहर 1:10 पर महफिल कवाली कार्यक्रम में कव्वाल होंगे जाहिद नाजा कव्वाल, आपके नाम फिल्मी पैगाम। फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा 1:30 पर। और दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारी प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर लाइव फोन आउट कार्यक्रम होगा हेलो डियर फ्रेंड्स, और 3:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार मेला 2026 का नई दिल्ली के विज्ञान भवन से सीधा प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 6:00 कृषि जगत कार्यक्रम में डायरेक्टर एग्रीकल्चर श्री देव बत्रा बसंतिया से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी खेत बचाओ अभियान। समाचार तरंगिनी सुनिए 6:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 13वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:45 पर। 6:55 पर हम आपको कार्यक्रमों के विवरण से अवगत करवाएंगे। संध्या 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। दिल ने फिर याद किया फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा 7:20 पर। संध्या 7:30 पर युवाणी के तहत फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो फ्रेंड्स। दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे रात 8:30 पर। सुनिए रोजगार समाचार व गौरव गान, और फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम होगा संदेश आते हैं रात 10:00, जबकि आप रात 9:30 पर सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिस्रे छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात

बजकर 30 मिनट पर करंट अफेयर्स कार्यक्रम होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: क्षेत्रे प्रमुखदेशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास सन्धिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गतदशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण शत प्रतिशतं वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 11.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 97% और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 28.8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:56 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:45। और अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरेगा आज दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज सवेरे 8:30 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के संदर्भ में द्वीपों के होटेलियर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गिरीश अरोड़ा से ली गई भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी। पिछले 12 साल में सरकार की उपलब्धि। शाम 5:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमा में उपस्थिति में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार मेला 2026 का नई दिल्ली के विज्ञान भवन से सीधा प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय याद रखिएगा, आज शाम 5:10 पर।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल की बात।
1: राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026।
2: नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल ना जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक मिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
1: जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026।

नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री आज से द्वीप समूह के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून को द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग प्रदर्शन किए जाएंगे और जनजातीय आजीविका विकास पहल के तहत पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आज से 21 जून तक द्वीप समूह के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लेंगे, विकासात्मक पहलों की समीक्षा भी करेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। खराब मौसम की स्थिति में मुख्य समारोह का स्थल गर्ल्स स्कूल के सभागार में कर दिया जाएगा। आज केंद्रीय मंत्री दोपहर में बिडनाबाद में विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत मोदी सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली एक पुस्तिका सौंपेंगे। इसके बाद वे पद्मश्री के चल्लामल के रंगाचांग स्थित जैविक नारियल फार्म का दौरा कर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा लगाएंगे। कल वे प्रगति पथ यात्रा के तहत पिछले 12 वर्षों के दौरान सरकार की पहलों के तहत शुरू की गई प्रमुख विकास परियोजनाओं का दौरा करेंगे। इस दौरे में फ्लैग पॉइंट, गांधी पार्क और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन शामिल होगा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री मिनी बे में आयोजित होने वाले विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेंगे और शाम को होटल लेमन ट्री में आयोजित होने वाले अंडमान आइडिया समिट 2026 में शामिल होंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रधानमंत्री कल तारकेश्वर हुगली पश्चिम बंगाल से अप्रैल से जुलाई माह की अवधि के लिए पीएम किसान की 23वीं किस्त पात्र लाभार्थियों को जारी करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दोपहर 3:45 से पीएम इंडिया वेबकास्ट .nic.in के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के समन्वय से द्वीप समूह में पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में किसानों, पंचायती राज संस्थाओं, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए विभिन्न कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे फरवरी 2019 में पात्र किसान परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके आधार लिंक्ड और DBT सक्षम सक्रिय बैंक खातों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की आय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत अब तक द्वीप समूह के किसानों को 22 किश्तों के माध्यम से 64.48 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विंग ने क्षमता निर्माण आयोग DOPT नई दिल्ली के सहयोग से कल टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में प्रशासन के अंतर्गत आने वाले विभागों के लिए iGOT AI का उपयोग करके व्यापक क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार करने पर कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के बीच योग्यता के अंतर को पाटने के लिए क्षमता निर्माण योजनाएं विकसित करने के संबंध में सभी विभागों को संवेदनशील और जागरूक बनाना था। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण सचिव सतनाम सिंह ने निरंतर सीखने और क्षमता निर्माण के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून को स्वस्थ आयु के लिए योग विषय

पर द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग प्रदर्शन किए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम सुबह 6:20 से 7:50 तक चलेगा। इसके अलावा गर्ल्स स्कूल सभागार, फ्लैग पॉइंट, नेताजी स्टेडियम के बहुउद्देशीय सभागार, जंगली घाट स्थित खेतान कल्याण मंडपम और टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में भी योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन ने सभी विभागों, संस्थानों, शैक्षणिक प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों तथा आम जनता से द्वीप समूह के निर्धारित स्थानों पर सामान्य योग प्रोटोकॉल के अभ्यास में शामिल होने का अनुरोध किया है। जनजातीय आजीविका विकास के लिए एक ऐतिहासिक पहल के तहत पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से कल 100% सब्सिडी योजना के अंतर्गत स्ट्रेट आइलैंड में रहने वाले ग्रेट अंडमानी जनजाति के 25 परिवारों को दो दो बकरियां वितरित की गईं। विभाग ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए इस तरह का एक व्यापक सब्सिडी आधारित बकरी वितरण कार्यक्रम शुरू और लागू किया है। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के बीच आजीविका के अवसरों को मजबूत करना, पोषण सुरक्षा में सुधार करना और बकरी पालन को एक टिकाऊ व लाभदायक गतिविधि के रूप में बढ़ावा देना है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग विभिन्न पशुधन और कुक्कुट विकास कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय यूजीएड कार्यक्रमों में विभिन्न विषयों में अतिथि प्रवक्ताओं का एक पैनल तैयार किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कॉलेज की वेबसाइट के अलावा सूचना पट पर भी उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ 3 जुलाई तक कॉलेज के प्राचार्य के पते पर जमा कर सकते हैं। सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन 7 से 10 जुलाई के बीच सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर समाज कल्याण निदेशालय की ओर से पूरे द्वीप समूह में नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान प्रतिभागियों को शराब और नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों, रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता से कॉमन योग प्रोटोकॉल में देश का नेतृत्व करने के समाचार को द डेली टेलीग्राम्स ने अपनी बड़ी खबर बनाई है। द्वीप समाचार ने केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के द्वीप समूह दौरे के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इस खबर के अलावा अखबार ने प्रधानमंत्री द्वारा कल PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करने के समाचार को भी प्रमुखता दी है। अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रचार समिति के अध्यक्ष द्वारा GB पंत अस्पताल में जल्द कार्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की मांग करने के समाचार को अपने अखबार में जगह दी है। इन्फो इंडिया ने खेत बचाओ अभियान और स्पाइस प्रवाह 2.0 के तहत टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए PM विकसित भारत योजना के तहत नियोक्ताओं को मिलने वाले लाभ के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री आज से द्वीप समूह के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल PM किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून को द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग प्रदर्शन किए जाएंगे और जनजातीय आजीविका विकास पहल के तहत पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से

0: कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागिनी।

দেশ রাগিণী। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, वतन में पैदा हुए हर शख्स के मन में उसके लिए एक जज्बा और गर्व का भाव होता है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि वह कहीं ना कहीं अपने देश के लिए कुछ कर सके, उसके लिए काम आ सके। वतन की जान निसार है, वतन के काम आएंगे, हम इस जमीन को एक रोज़ आसमां बनाएंगे।

श्रोताओं, भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृतियाँ और परंपराएं होने के बावजूद लोग एक साथ मिलकर एक राष्ट्र के रूप में रहते हैं। आन देश की, शान देश की हम संतान हैं। तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है।

0: देश रागिनी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश रागिनी, मीडियम वेव 400

33.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

श्रोताओं, हर सांस एक तोहफा है, इसे शिकायतों में ना गवाना। हर एक लम्हा अनमोल है, इसे मुस्कुरा कर बिताना। जो बीत गया सो बीत गया, अब अपने आज को अपनाना। खोना नहीं उम्मीद कभी, कोशिशें बार बार दोहराना। जी हाँ श्रोताओं, नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और आज के इस सफ़र में मैं हूँ आपके साथ सुनीता।

अभी आप शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था क्रांति। और अब आइए सुनते हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में फिल्म ज़मीन का ये गीत। बोल समीर के हैं, बधुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
1: मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-9-01-701 पर।
2: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
3: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
2: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
3: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
2: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
3: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
2: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
3: अगर बुखार हो तो रक्त की जांच करवाएं।
2: अब हम कर सकते हैं।
3: अब हमें करना होगा।
2: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
3: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
2: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह!
5: अनजान ऐप से बचें।
6: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
8: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
9: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था।

0: हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं इंतहा, इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुरों में पिरोया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, बोल राहत इंदौरी के हैं, वधुन बनाई है अनु मलिक ने।

अपेश है समीर का लिखा एवं नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है कयामत।

0: श्रोताओं, वक्त सबसे बड़ा गुरु है जो हर मोड़ पर कुछ सिखाता है। कभी आंसू देकर समझाता है, कभी खुशियों की राह दिखाता है, कभी मेहनत तो कभी सब्र का असली मोल हमें बताता है। जो इसके संग चलना सीख गया वो जिंदगी को जीत गया। जी हाँ श्रोताओं, इसी विचार के साथ मैं सुनीता आप सबों से विदा लेती हूँ। आप यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, सुप्रभात।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

अभी आप गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: जनहित में जारी।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
2: पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
5: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
5: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।

0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
1: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने सातवें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
2: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण

0: महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
1: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
3: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमरीका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का

0: in New Zealand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के संदर्भ में द्वीपों के होटलियर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गिरीश अरोड़ा से ली गई ये भेंट वार्ता। विषय है पिछले 12 साल में सरकार की उपलब्धि।
2: पिछले 12 साल में हमने बहुत कुछ देखा है। हमने कई देशों के बीच में जंग देखा है, हमने कोविड देखा है, फिर भी एज ए कंट्री, एज ए देश हम आगे बढ़ते रहे। पिछले 12 साल में सरकार की क्या उपलब्धि रही अंडमान निकोबार द्वीपों के संदर्भ में, इस विषय में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है अंडमान निकोबार के बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन श्री गिरीश अरोड़ा, जो कि होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है और इंडियन ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: नमस्कार जी।
2: सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नटशेल में अगर हम बात करें कि ये 12 साल में क्या डिफरेंस हम लोगों को दिखा है, डिटेल में हम बात करते रहेंगे लेकिन नटशेल में तो आप क्या कहेंगे 12 साल में क्या पॉजिटिव इन द्वीपों ने देखा है?
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं और ये 12 साल ने जो अचीवमेंट, जो डेवलपमेंट ना सिर्फ रेस्ट ऑफ इंडिया में बल्कि भारत देश पूरे और अंडमान निकोबार में देखा है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सुशासन, करप्शन फ्री गवर्नमेंट, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मूल प्रिंसिपल को लेके माननीय प्रधानमंत्री ने ये सुनिश्चित किया है कि भारत का हर नागरिक भारत के ग्रोथ जर्नी में एक पार्ट हो, वो उसका लाभ उठा सके और वो उनके साथ सबका साथ ग्रो कर सके।
2: अंडमान निकोबार के संदर्भ में ना हम लोगों ने 12 साल में कुछ मैसिव इंफ्रा प्रोजेक्ट देखे हैं
3: जी,
2: उसमें आपको क्या लगता है कि कितना बेनिफिट अंडमान निकोबार द्वीपों को मिला है?
3: देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप जो है माननीय प्रधानमंत्री के दिल के बहुत करीब रहा है। आपको याद होगा जब शुरू में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट देश भर में लागू हुए थे तो हम उस वक्त, क्योंकि ये बिडिंग मॉडल था और मार्क्स पे निश्चित किया जा रहा था कि किन स्टेट्स को दिया जाएगा, तो हमको आउट ऑफ टर्न स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चुना गया, फंड्स दिए गए, और उससे आपको ये मालूम पड़ता है कि अंडमान निकोबार हमेशा से प्रधानमंत्री के दिल के बहुत करीब रहा है। स्मार्ट सिटी के बाद इमीडिएटली जो हमने कोविड में देखा, अंडरसी केबल,
2: एग्जैक्टली,
3: जो रिकॉर्ड टाइम में सारे आइलैंड्स को भारत से अंडरसी केबल द्वारा कनेक्ट किया गया ताकि हम जो डिप्राइव थे गुड इंटरनेट कनेक्शन का, वो उन्होंने सुनिश्चित किया। और आज के टाइम में बिना गुड इंटरनेट सर्विस का कोई भी चीज़ नहीं हो सकता है, बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा हाईवेज और NH स्टेट हाईवेज, जो ये हमारे दिगलीपुर तक का जो NH4 है, ये आपको पता ही होगा कि पहले इसको बंद करने वाले थे और अल्टरनेटिव सी रोड की बातें चल रही थी। हमारे मोदी जी की सरकार ने ना सिर्फ इसको चालू रखा पर इसका वाइडनिंग भी किया, स्ट्रेंथनिंग भी किया, दो ब्रिजेस भी बनाए और पूरे अंडमान निकोबार पोर्टब्लेयर से दिगलीपुर तक इसको सीमलेसली कनेक्ट किया। ये हमारे जितने भी विलेजेस हैं अप नॉर्थ में, करीब 40 डिगलीपुर तक 35 विलेजेस जो हैं, उन सब का लाइफ लाइन है ये। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो जिसने सुनिश्चित किया कि लाइफ भी इजी हो, प्लस आने वाले समय में नॉर्थ एंड मिडिल का टूरिज्म भी इसी पर निर्भर करेगा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही निर्भर करेगा। टर्मिनल बिल्डिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था जो आपको पता ही होगा, जो पहले हमारे जो टर्मिनल बिल्डिंग था वो इक्विप्ड नहीं था, और ये आज जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो मिनिमम दिन के 50 फ्लाइट हैंडल कर सकता है उस, और थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशन के बाद उसके ऊपर भी जा सकता है। तो कम से कम आने वाले 10 साल तक के लिए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि यहाँ पर इनफ एयर ट्रैफिक आ सके, और सिर्फ टर्मिनल बिल्डिंग नहीं, इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग, नाइट लैंडिंग, रन

0: का स्ट्रेंथनिंग, जिससे कि बड़े एयरक्राफ्ट जो हैं 220 सीटर वाले बड़े एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकें और काफ़ी पेलोड के साथ यहाँ लैंड कर सकें, ये भी सुनिश्चित किया गया इस एयरपोर्ट और इस रनवे के माध्यम से।
1: एक और इम्पोर्टेंट मैटर जो अब सामने आ रहा है, हर मीडिया कवरेज मिल रहा है हर जगह पे, वो है ऑयल एक्सप्लोरेशन। उसके उसमें अंडमान का नाम आ रहा है कि यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन पॉसिबल होगा, तो ये कितना बेनिफिट करेगा अंडमान निकोबार आइलैंड को?
0: देखिए, कई साल पहले ऑयल एक्सप्लोरेशन यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि यहाँ में कोई मिसाइल ट्रेजेक्ट्री की वजह से यहाँ पर जो लिमिटेड हमारा जो बे ऑफ बंगाल का जो सी रीजन है, उसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन करना पॉसिबल नहीं था। पर भारत सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि ये इस एरिया में ऑयल एक्सप्लोरेशन शुरू हो, ऑयल ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए, फिर उसका एक्सप्लोरेशन हुआ और अभी मेरे ख्याल से 7th ड्रिलिंग चल रहा है कैमल बे के पास में, और अभी तक के ड्रिलिंग्स में काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए हैं, और स्पेशली गैस के संदर्भ में, नेचुरल गैस का जो फाइंडिंग्स हुआ है, दैट हैज़ बीन वेरी प्रॉमिसिंग एंड कमर्शियल लेवल पे। मतलब कि गैस मिलना एक चीज़ है और कमर्शियली वाइबल होना और उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो पाना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक के जो इनिशियल रिजल्ट्स आए हैं, उसमें ये पता चला है कि कमर्शियली वाइबल है, और अब जाकर प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में इस पर अभी ऑयल इंडिया एंड ONGC, ये दोनों ने एक्सप्लोरेशन किए हैं, और अभी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ टाई अप कर कमर्शियल एक्सट्रैक्शन पर आगे काम बढ़ेगा।
1: इससे क्या लगता है कि अंडमान के लोगों को इससे क्या बेनिफिट होगा ये ऑयल एक्सप्लोरेशन से, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में?
0: देखिए, जहाँ पर भी ऑयल फाइंडिंग्स होगा तो उसका एक्सप्लोटेशन वहीं पर उसी रीजन में होगा। अब पाइपलाइन द्वारा उसको शोर पे लाया जाएगा, शोर पे फैसिलिटी डेवलप होगी, यहाँ पर काफ़ी सारे शिप्स आएंगे जो इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, और एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम आज हम अंडमान निकोबार आइलैंड स्पेशली फेस कर रहे हैं कि हम अपना सारा हाइड्रोकार्बन, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो या LPG हो, हम सब कुछ
1: इम्पोर्ट
0: इम्पोर्ट कर
1: करते
0: रहे हैं रेस्ट ऑफ इंडिया से या फिर मलेशिया से। हम सब कुछ यहाँ पर बाहर देशों से लेके आ रहे हैं और फिर यहाँ यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारा कॉस्ट बहुत हाई है एंड उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन भी बहुत हाई है। तो इसमें हमको बहुत बेनिफिट मिलेगा, हम ना ही हमारा कॉस्ट कंट्रोल होगा, बट हम यहाँ से रेस्ट ऑफ इंडिया और इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे, और इससे हमारी शिपिंग इंडस्ट्री, फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यूज, इस पर बहुत फर्क पड़ेगा।
1: एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर है फिशिंग सेक्टर, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो पाया है आपको लगता है और कितना पोटेंशियल है अंडमान निकोबार आइलैंड में?
0: देखिए, आज आज़ादी के बाद अभी लास्ट ईयर तक हमारे पास तो डीप सी फिशिंग पॉलिसी नहीं थी। भारत सरकार, मोदी जी की सरकार ने लास्ट ईयर डीप सी फिशिंग पॉलिसी पैन इंडिया के लिए नोटिफाई किया है, और अंडमान के संदर्भ में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसकी बाउंड्री भी क्लियर नहीं थी। जो स्पेशली हमारा जो ईस्टर्न साइड है, अंडमान निकोबार का जो ईस्टर्न कॉरिडोर है, उस साइड का जो बाउंड्री है वो भी डिफाइन नहीं हुआ था। अभी अभी ये काम भी जो है वो लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है, और उसकी वजह से जो हमारा कोस्ट लाइन है, जो टोटल इंडिया का कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर्स, उसमें अंडमान निकोबार का अबाउट 3,083 किलोमीटर्स का कोस्ट लाइन है, विच इज़ अ वेरी सब्सटेंशियल पार्ट, और इंडिया के 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में करीब 6,60,000 स्क्वायर किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1/3 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो अंडमान निकोबार का है। तो ये सारा का सारा एरिया अभी अवेलेबल हुआ है डीप सी फिशिंग के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो फिशरी सेक्टर को हम यहाँ में एक्सप्लॉयट कर पाएंगे, और यहाँ से फिश को हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे रेस्ट ऑफ इंडिया में भी और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी।
1: क्या पोटेंशियल है यहाँ से, अगर फिशिंग को आप अगर मेन इंडस्ट्री हिसाब से भी माने तो क्या पोटेंशियल है फिशिंग का अंडमान निकोबार आइलैंड में?
0: तो जैसे मैंने आपको बताया, 1/3 ऑफ EEZ अगर हमारे पास है तो स्कोप बहुत बड़ा है, बट क्योंकि अब ये डेवलपिंग है, स्पेशली अंडमान निकोबार में फिशिंग सेक्टर को अभी डेवलप करना है, डीप सी ट्रॉलर्स और टोटल इकोसिस्टम बनाना है, और अभी ये शुरुआत है, इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय जरूर लगेगा, बट ये एक जैसे अभी टूरिज्म यहाँ का मेन इंडस्ट्री है, तो दिस विल इन कमिंग ईयर्स बिकम द मेजर इंडस्ट्री अगर हम इसको इसकी ग्रोथ

0: उस जर्नी को प्रॉपरली प्लान करके आगे लेके जाएं तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले सकता है।
1: टूरिज्म से पहले एक सवाल पूछता हूँ, जो आपने कहा कि फिशिंग इंडस्ट्री है, इसका बहुत बड़ा मार्केट है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, और हमारा टाइप के लिए बहुत सारा बातचीत चल रहा है कि हम टाइप करें आइधर थाईलैंड के साथ या फिर बांद्रा के साथ, इंडोनेशिया के साथ, तो इस सेक्टर में क्या पोटेंशियल है, क्या क्या चेंज हो सकता है अगर ये टाइप हो जाए एक बार?
0: देखिए, मेन फिशिंग इंडस्ट्री में आपके कैपिटल इंटेंसिव है, मैन पावर इंटेंसिव है, एंड अभी हमारे पास स्पेशली अंडमान निकोबार में उस तरह के ट्रॉलर्स नहीं हैं, उस तरह का मैन पावर नहीं है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी नेबरिंग कंट्री के साथ या नेबरिंग स्टेट्स के साथ, जहाँ पर ये एक्सपर्टीज है, उनके साथ टाई अप करके यहाँ अंडमान वाटर्स में एक्सप्लोटेशन कर सकें और उसको हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकें। डीप सी फिशिंग पॉलिसी के आने से पहले हमको ये फिश जो कैच होता था उसको हमको वापस पोर्टब्लेयर लाना पड़ता था और उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ता था। अब इस पॉलिसी के दरमियान हम जो मदर वेसल्स हैं उनको यूज़ कर सकेंगे और डीप सी फिशिंग के बाद उसको हम डायरेक्ट वहीं से एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, तो उन वेसल्स को वापस ऑल द वे पोर्टब्लेयर नहीं आना पड़ेगा और वो लैंडिंग जो है नियरिंग कंट्रीज में, जहाँ से बाय एयर एंड बाय रोड इट कैन गेट एक्सपोर्टेड टू फर्दर ईस्ट, जापान एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज या सिंगापुर, जहाँ पर इस कैच की बहुत अच्छी वैल्यू रियलाइज कर पाएंगे हम।
1: एक और पॉलिसी मैटर पे आते हैं जो है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, उससे अंडमान निकोबार में कितना फर्क पड़ा, बिजनेस कम्युनिटी में कितना चीजें आसान हुई और कितने लोगों को बेनिफिट पहुंचा?
0: देखिए, जीएसटी पैन इंडिया में मल्टीपल टैक्सेस थे और अंडमान निकोबार में उस वक्त भी सिर्फ एक सेंट्रल सेल्स टैक्स था, सीएसटी था, मल्टीपल टैक्सेस यहाँ पर नहीं थे,
1: ऑक्ट्रॉय भी था,
0: ऑक्ट्रॉय एंड सीएसटी था। तो ये सब सब्ज्यूम होकर जीएसटी के आने के बाद में ये एक सिंपल मैकेनिज्म के तौर पर सामने आया है, जिससे कि क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंसी, और पहले आपको मालूम होगा जैसे मटेरियल को क्लियरेंस करने में, ऑक्ट्रॉय पेमेंट करने में, जट्टी से लाने में, वैल्यूएशन का डिस्प्यूट, इनवॉइसेस प्रेजेंट करना, ये सब मल्टीपल इश्यूज थे। बट अब क्या है कि ये जीएसटी इनवॉइस ऑनलाइन जनरेट हो जाता है और वो क्यूआर कोड के माध्यम से सारे डिपार्टमेंट में है, ई वे बिल बन जाता है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है और समय का लॉस, और स्पेशली अगर आप पैन इंडिया में देखें तो जब माल मटेरियल जो है वो एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाता था तो बॉर्डर पे चेक पोस्ट पे काफी टाइम लगता था उन ट्रक्स को क्लियर होने में, डॉक्यूमेंटेशन होने में,
1: मल्टीपल टैक्सेशन होता था,
0: मल्टीपल टैक्सेशन था। अब वो सब इजी हो जाने की वजह से मटेरियल का मूवमेंट अंडमान में भी फास्टर हो गया है और कॉस्ट में भी थोड़ा फर्क पड़ा है बिकॉज द ट्रांजिट टाइम हैज रिड्यूस सब्सटेंशियली और सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। उससे इसे क्या ये हो गया है कि आपको पता है कि भाई आपको ये टैक्स चार्ज करना है, क्लैरिटी है, और कस्टमर को भी पता है कि भाई ये एवरीथिंग इज इंक्लूसिव इन एमआरपी और इसके अलावा उनको कुछ देने की जरूरत नहीं है।
1: एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर है, वो है एजुकेशन सेक्टर। क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस हमने देखा है पिछले 12 साल में और क्या क्या हो सकता है?
0: अंडमान निकोबार में आपने देखा ही होगा कि जैसा मैंने पहले कहा, प्रधानमंत्री ने स्पेशल गिफ्ट अनिम्स मेडिकल कॉलेज हमको दिया। वहाँ भी हम शायद क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, पर आउट ऑफ टर्न हमको मेडिकल कॉलेज यहाँ दिया गया और आज सबको पता है यहाँ के हर साल इतने बच्चे पढ़ पा रहे हैं और बहुत ही कम फीस में वो अपना मेडिकल कोर्स कंप्लीट कर पा रहे हैं। उसके अलावा एनकॉल लॉ कॉलेज एंड अभी रिसेंटली में डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये सारे चीज़ों ने एजुकेशन सिस्टम को, हायर एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी काम हुआ है, आईटीआई के द्वारा, डीब्रेड के द्वारा स्किल डेवलपमेंट और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे बहुत काम भारतवर्ष में हुआ है और स्पेशली अंडमान निकोबार में भी बहुत हुआ है।
1: अब सबसे मेगा प्रोजेक्ट जो है जीएनआई प्रोजेक्ट, उस पर बात करते हैं, ये कितना बड़ा चेंज रहेगा अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए और कितना बेनिफिट यहाँ के लोगों को मिलेगा?
0: देखिए, जीएनआई करीब अबाउट 1,00,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है रफली, और ये अमाउंट और बढ़ेगा क्योंकि जैसे समय जाएगा वैल्यूएशन और प्रोजेक्ट के कॉस्ट एनहांस और प्रोजेक्ट का स्कोप भी बढ़ जाता है। तो अभी इस वक्त तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अंडमान निकोबार में ओवर अ पीरियड ऑफ 7-8 ईयर्स या 10 ईयर्स में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आने का सीधा डायरेक्ट मतलब ये है कि यहाँ की शिपिंग

0: इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैन पावर, ये सब में डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। इसके अलावा जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और पोर्ट प्रोजेक्ट इनिशियली जो अभी पहले ये दो स्टार्ट होंगे, क्योंकि माल मटेरियल को मूव करने के लिए सबसे पहले तो पोर्ट है, और उस पोर्ट प्रोजेक्ट में भी जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत सरकार खुद बना रही है, और उसके बाद ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का जो एक पार्ट होगा या एक बर्थ होगा वो प्राइवेटाइज करेंगे, जिससे कि आपको पता ही होगा हम राइट एट द माउथ ऑफ मलाका स्ट्रेट बैठे हैं, जो वर्ल्ड का बिजिएस्ट सी रूट है, एंड ऑलमोस्ट 50-55% ऑफ इंडियाज कार्गो, नॉट ओनली ऑयल, टोटल कार्गो मूव्स थ्रू मलाका स्टेट, एंड हमारा करीब करीब 40% ऑयल भी डिपेंडेंसी मलाका स्टेट के ऊपर है। सिमिलरली अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो डिपेंड अ लॉट ऑन मलाका स्टेट, और आपने अभी हाल ही में ईरान और स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जो टोटल इंटरनेशनल ट्रेड डिस्ट्रप्शन हुआ है, और जैसे कंट्रीज ने हॉर्मुज को वेपनाइज किया है, और इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ ईरान में या मिडल ईस्ट में बल्कि पैन इंडिया, जापान से अमेरिका तक हर कंट्री पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है, तो इट बिकम्स ऑल द मोर वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने पोर्ट को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करें। आज मोस्ट ऑफ द मदर कंटेनर वेसल्स जो हैं वो साउथ चाइना से मलाका स्ट्रेट क्रॉस करके सिंगापुर में या फिर श्रीलंका में ये कंटेनर्स को ऑफलोड करते हैं, जो फिर छोटे वेसल्स के थ्रू कंप्लीट ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ थाईलैंड, बर्मा, इंडोनेशिया, ये सारों को फीड करता है, राइट फ्रॉम श्रीलंका टू तमिलनाडु टू विशाखापट्टनम, ओडिशा, बंगाल, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, इन सारे पोर्ट्स को ये कंटेनर्स को छोटे वेसल्स फीड करते हैं। एंड इंडिया स्पेंड लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हजारों डॉलर, हजारों करोड़ डॉलर्स के अमाउंट्स को हम इन कंटेनर शिपमेंट यार्ड्स को पेमेंट करते हैं, तो ये हमारी डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज सेविंग हो जाएगी। सिर्फ सेविंग नहीं, एस्टीमेट्स के द्वारा बाय 2040 वी वुड बी एबल टू जनरेट 30,000 crores ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम जस्ट द ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। और क्योंकि हम जियोग्राफिकली इतने स्ट्रैटेजिक पोजीशन में बैठे हैं कि हमको उसका लेवरेज करना इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि हम उसका बेनिफिट उठा पाएं और इकोनॉमिक बेनिफिट उठा पाएं और अपने आप को इस रीजन में एक स्ट्रांग मैरिटाइम नेशन की तरफ फोकस कर पाएं।
1: जो आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा, हम जानना चाहेंगे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा यहाँ पे जीएनआई प्रोजेक्ट में, और साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कितना रहेगा आइलैंडर बच्चों के लिए।
0: कैम्बलमेर में तो आपको पता है पॉपुलेशन बहुत कम है, तो 170 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टाउनशिप डेवलप करना है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एंड बहुत बड़ा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। अब पोर्ट में जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है उसमें शिप रिलेटेड, शिपिंग रिलेटेड, पोर्ट रिलेटेड, गाड़ियां, क्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, ये सारे काम आएंगे पोर्ट बनने के बाद, बट इनिशियली आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क स्टार्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट का काम वहां शुरू हो जाएगा। अभी जब लोग काम करने के लिए आएंगे तो वहां में होटल्स की जरूरत पड़ेगी, रहने के लिए भी पड़ेगी, खाने के लिए भी पड़ेगी, गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, तो ये अभी स्टार्टिंग में है, और गोइंग फॉरवर्ड जब ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो एस्टिमेट्स के हिसाब से करीब करीब इट विल डायरेक्टली जनरेट एटलीस्ट 5 लाख जॉब्स, इमीडिएटली इट विल जनरेट अबाउट 5 लाख जॉब्स, एंड इन ऑल स्पेक्ट्रा, लाइक फ्रॉम द बेस लेवल जॉब टू वेरी हाईली स्किल्ड जॉब। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे बाय शिप एंड एयर टू मेनी ऑफ दीज इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस, वो हमको डायरेक्ट आपको मौका मिलेगा यहाँ से एक्सपोर्ट का, जो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आज जो भी एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं विच हैज टू गो टू रेस्ट ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम देयर इट इज देन एक्सपोर्टेड बाय शिप और बाय एयर। इस पोर्ट की वजह से when we have connectivity with international liners coming and calling upon this port and container transshipment happening from this port, we will have direct connectivity which will directly help us, wo seedha hamare vyapar ko badhayega, hamari manufacturing capacity ko badhayega, hamare tourism ko badhayega aur hamari fishing industry ke export ko badhayega।
1: Exactly, aapne abhi GNI ke bare mein baat ki, humne thodi der pehle baat ki ki international connectivity ke bare mein, ab agar dono jud jaye, international flight shuru ho jaye, जीने प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, तो कितना चेंज होगा सिनेरियो में, कितना बेनिफिट होगा अंडमान के लोगों को।
0: हमने हमेशा से ये कहा है कि अंडमान निकोबार हैज अ पोटेंशियल, अभी हम कंप्लीटली गवर्नमेंट एड पे

0: भारत सरकार के एड पे चल रहे हैं, 5-10 हज़ार करोड़ रुपए हम सालाना खर्च कर रहे हैं, बट अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जियोग्राफिकली जो हमारा लोकेशन है, हम इससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये उस दिशा में एक कदम है। कई आपने देखा होगा दुनिया में हमसे भी छोटे आइलैंड नेशंस हैं जो काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करते हैं, एंड हम पर्सनली ये बिलीव कर रहे हैं कि अंडमान निकोबार हैज़ द कैपेसिटी टू बिकम सेल्फ रिलायंट एंड ऑल्सो जनरेट रेवेन्यू टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी।
1: एक सेक्टर छूट रहा है जो है शिपिंग सेक्टर। शिपिंग सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हमने देखा है पिछले 12 साल में, और क्या चेंजेस लगता है आपको होने वाला है?
0: देखिए, अभी इस लास्ट बजट में आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल फोकस किया शिप बिल्डिंग के ऊपर में, और आज हमारे भी बड़े शिप्स जो हैं एनुअल सर्वे के लिए या मेजर ओवरहॉलिंग के लिए श्रीलंका या बाहर के पोर्ट्स में कॉल करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बट अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है शिपिंग सेक्टर को डेवलप करने का, स्पेशली शिप रिपेयर इंडस्ट्री को डेवलप करने का, और इसको एक फोकस इंडस्ट्री के रूप में देखा जा रहा है, तो अंडमान निकोबार में जब ये GNI प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट आएंगे और जब प्राइवेट शिप्स की संख्या बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली शिप रिपेयर एक इंडस्ट्री है जो पैरेलली अलाइड है, और वो ऑटोमेटिकली ही डेवलप हो जाएगा उसके साथ में, विच विल जनरेट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर लोकल यूथ। क्योंकि हमारे बच्चे जो अभी जिनको इंजीनियरिंग करने के बाद CDC करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए उनको बाहर के शिप्स में जाना पड़ रहा है, उनको यहाँ में एम्पल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगे।
1: कुछ हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि डिगलीपुर में शिप बिल्डिंग यार्ड होने वाला है या पोर्ट ब्लेयर में होने वाला है, ये इसका कुछ कॉन्क्रीट आपके पास इन्फॉर्मेशन है, और कितना टाइमलाइन आप दे सकते हैं इसके बारे में कि कब तक ये हो जाएगा?
0: डिगलीपुर में एक डीप सी पोर्ट का प्रोजेक्ट है अटलांटा बे में, जिसकी स्टडी चल रही है कि भाई वहाँ पर, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो पोर्ट है डिगलीपुर का विच इज़ नॉट वेरी सफिशिएंट फॉर कंटेनर शिप्स हैंडलिंग, तो एक अटलांटा बे में एक पोर्ट की फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह कंक्लूड हुई है कि वेदर द ड्राफ्ट इज सफिशिएंट और नॉट। वो भी एक प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में है, और ज़रूरी भी है क्योंकि नॉर्थ के लिए अगर आप यहाँ से देखें तो मायाबंदर और डिगलीपुर ये दो मेन पोर्ट्स हैं, और डिगलीपुर में अभी डिफेंस का भी काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है, तो गोइंग फॉरवर्ड पोर्ट की नेसेसिटी फॉर द नॉर्थ ऑफ अंडमान इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आने वाले समय में आई एम होपफुल कि वो पोर्ट भी बनेगा। बट शिप रिपेयर की जो फैसिलिटी है आज उसकी ज़रूरत हमको साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में है, क्योंकि मोस्टली जो शिप की डेंसिटी यहाँ पर है, और अभी जो भी शिप्स हैं मोस्टली गवर्नमेंट वेसल्स हैं, और प्राइवेट वेसल्स के लिए भी डेवलपमेंट और शिप रिपेयर फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा, और जैसे जैसे शिप की डेंसिटी बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगा शिप फैसिलिटी। अभी भी रिपेयर यूनिट्स हैं बट छोटे स्केल पे हैं, बट जैसे ही बड़े प्रोजेक्ट GNI प्रोजेक्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे तो ये रिपेयर फैसिलिटी भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे।
1: एक छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूँ कि टूरिज्म सेक्टर में आपको क्या लगता है कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं?
0: हिस्टोरिकली अंडमान निकोबार में टूरिज्म ही एक ऐसा, बिकॉज अगेन ऑफ आर नेचुरल ब्यूटी, कि ये एक लौटा ऐसा आइलैंड नेशन है अंडमान निकोबार हमारे देश में, जो इतना ब्यूटीफुल है और नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, तो एक नेचुरल पोटेंशियल है जो डेवलप हो सकता है, और उसी दिशा में ये जो ATR टर्मिनल बिल्डिंग, सी प्लेन की जो कनेक्टिविटी की बात हो रही है, ये सब उसी दिशा में आगे बढ़ने के हम लोगों का, सबका, एडमिनिस्ट्रेशन का, भारत सरकार का प्रयास है कि हम कोशिश करके इसका और बेनिफिट उठा पाएं। बट हाल के दिनों में बिकॉज ऑफ द वेरियस वॉर्स और इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस और इन सब की वजह से, फ्लाइट में कमी आने की वजह से और एविएशन फ्यूल महंगा हो जाने की वजह से फ्लाइट फेयर्स बढ़ गए हैं, एयरलाइंस ने काफ़ी फ्लाइट्स विड्रॉ कर लिए हैं। जैसा आपने देखा होगा फरवरी में हमारे पास एवरीडे 26 फ्लाइट आ रहे थे, और अभी करीब 10-11 फ्लाइट एवरीडे आ रहे हैं, तो 50% से भी ज़्यादा रिडक्शन हो गया है। इस वजह से अभी थोड़ा सा टूरिज्म में स्लम्प है पूरे आइलैंड में, बल्कि पूरे भारत में, पर वी आर वेरी होपफुल कि आने वाले समय में जब ये वॉर सिचुएशंस इम्प्रूव हो जाएंगे तो वापस टूरिज्म रिवैम्प हो जाएगा, और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी एक ऐसा स्टेप है जो हम सोच रहे हैं कि अगर वो पॉसिबली हो जाए तो वो भी एक मेजर बूस्ट होगा टूरिज्म इकोनॉमी को इस आइलैंड में।
1: इससे पहले कि हम एंड करें, जो टूरिज्म फिगर है हम 6 लाख के आसपास पकड़ते हैं, तो कितना तक पहुंच सकता है अगले 2-3 सालों में?
0: देखिए, अगर आप देखेंगे लास्ट कैलेंडर ईयर में टोटल पैसेंजर अराइवल वॉज अबाउट 9 लाख, तो 9 लाख पैसेंजर

0: अराइव्ड इन वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. उसमें करीब करीब 5.5-6 लाख के करीब रफली एस्टिमेट है कि टूरिस्ट रहे होंगे. पोटेंशियल आज के करंट इंफ्रास्ट्रक्चर में वी कैन हैंडल क्लोज टू अबाउट 8 लाख टूरिस्ट. जो आज का करंट नंबर ऑफ होटल्स है वो हम सफिशियंटली हैंडल कर सकते हैं. बट ये डिमांड सप्लाई है. जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा सप्लाई ऑटोमेटिकली आ जाएगी. बट आई कैन अश्योर यू दैट वी आर केपेबल इनफ कि आने वाले 2-3 साल में हम इसको 10 लाख के नंबर्स को वी कैन सेफली हैंडल. एंड विद ओपनिंग ऑफ मोर आइलैंड्स एंड मोर डेस्टिनेशंस वी कैन ऑलवेज लुक टू टारगेट 20 लाख टूरिस्ट इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स.
1: तो ये जो प्रॉमिसिंग फिगर आपने दिया है 10 लाख या 20 लाख टूरिस्ट हम केपेबल है कैटर करने के लिए, इसके साथ आज का बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं. हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.

अभी आप सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के संदर्भ में द्वीपों के होटलियर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गिरीश अरोड़ा से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। विषय था पिछले 12 साल में सरकार की उपलब्धि। भेंट करता थे संजीव कुमार रॉय। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए ये देशकान।

अभी आप ये देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहानी। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म के एक गीत से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। बोल प्रकाश मेहरा के हैं। वधुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

फिल्म इज्जत का ये गीत। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हेलो, मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती माँ मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
0: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं खय्याम के संगीत निर्देशन में तैयार फिल्म रजिया सुल्तान का ये गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

राम तेरी गंगा मैली। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। गीत एवं संगीत रचना रविंद्र जैन के हैं।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपको सबसे पहले पंडित जसराज का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनवा रहे हैं।

अभी आप पंडित जसराज का हिंदुस्तानी शैली में गाया राग गुंजी कदाना सुन रहे थे। और अब आइए सुनते हैं उस्ताद अमजद अली खान का सरोद पर बजाया राग अभोगी।

अभी आप उस्ताद अमजद अली खान का सरोद पर बजाया राग अभोगी सुन रहे थे, और अब अंत में सुनिए पंडित कुमार गंधर्व का गाया राग अंडाना।

0: अभी आप पंडित कुमार गंधर्व का गाया राग अडाना सुन रहे थे।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
5: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
4: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
5: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
4: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
5: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
4: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
5: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
4: अब हम कर सकते हैं।
5: अब हमें करना होगा।
4: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
5: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
4: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 10 बजे हैं। अब हम आपको सुनवाएंगे दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर की रिकॉर्डिंग।
6: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो ना केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहाँ से एक वीर निकलता है, जहाँ से एक सिपाही निकलता है, जहाँ से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे अपने प्राणों का निछावर क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तरवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए, लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है, आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है? क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।
1: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह, वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे। और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में
0: जी।
1: वहाँ से भी एक एक एक वो है, ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं। और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊँगा। और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, वो भी राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी का, अपने फादर की यूनिफॉर्म, अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने ये कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और जब उस वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
1: देखिए, हालांकि हम फौजी परिवार से हैं, लेकिन कोई माँ, किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए। तो ये बातचीत तो हुई थी, लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा। मेरे को याद है मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए, और रेलवे स्टेशन पे सभी की माएँ हमको बाय बाय करने आई। शायद दो माएँ रो रही थी, लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उनको उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडीए की तरफ।
0: वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है। जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज़ ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुँच सकती है, इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना। अच्छा, ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म्ड फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने, कहते हैं ना, अपना प्यार कैसे बरसाया?
1: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलकुआं का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो काफ़ी जोश था उस टाइम पर, 92-93 की बात कह रहा हूँ मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का। और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था, तो पूरे स्कूल में नाम हुआ। इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए

नंदन वंदन अभिनंदन। मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित

0: हुए उस टाइम पे मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देखे कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया। और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक अफसर बन गया।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने तब अलग आप अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, कि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
0: देखो, जाना तो काफ़ी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि APS से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता, तो काफ़ी प्रेज़ होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में। हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है, तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो इंडिया नहीं जा पाए, वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं। वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए NDA या जो भी एंट्री आप चाहते हो फौज ज्वाइन करो।
1: क्या बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार भी मिला। ये बताइए, स्कूल में काफी शैतानियां क्या करते थे?
0: हाँ, यस, मेरा एक बड़ा भाई है तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूँ, और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे। मैं काफी शरारी था, मेरे मेरे 12th ए की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे 12th ए वाला सुन रहा है तो, काफ़ी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए। कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं, पर मैं काफ़ी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है।
1: बरकरार है। अच्छा, ये बताइए, शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा, या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए, क्योंकि
0: हाँ,
1: आर्मी का तो काम नहीं है ये आर्म फोर्सेस का कि आपसे आप में से एक ऑफिसर बनाना है। लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है, तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार। तो शैतानियों का वो दौर वहां चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
0: निश्चितानियों का दौर तो एनडीए में भी चला। शुरू शुरू में जब एनडीए पहुंचे तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन, तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है। और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए। एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो, लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज़ करना, वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोर्समेट्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे स्क्वाड्रन सीनियर्स होते हैं, वो हम में लाते हैं।
1: वाह, क्या बात है। तभी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया। एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहाँ, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
0: NDA के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी गया, देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की एकेडमी है। वहाँ से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में, मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया। और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी, और इमेजिन मेरा मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ
1: वाह, क्या बात
0: और
1: है।
0: मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे, 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हमने बहुत अच्छा काम किया, और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया। और आगे मेरा मेरा सफ़र 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं उसमें शुरू हुआ।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बन के पीछे मुड़कर देखा, तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूं शायद वो महसूस ना कर पाता अगर यहां ना होता?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड जिसकी वजह से मैं NDA गया, NDA में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन

0: मेरे कोर्समेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोर्समेट्स हैं। IMA में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है जो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी मेरी ज़िंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
1: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा ख़राब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे?
0: आपने आप दुखती रख पे मेरे हाथ रख दिया। मैं
1: हर
0: आज
1: बच्चे के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
0: दो दिन तीन दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे NDA में रात को, अच्छा तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
1: अच्छा
0: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे उस टाइम पे, तो मतलब नए फोटो थे। तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था, एंड शायद एक दो बार शायद रोने को भी हो गया हूँ, रोया नहीं हूँ, बट देख के ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आओ,
1: ले जा ले, ग्रिल लगा ले।
0: 5 महीने का टर्म होता है जून टू नवंबर, बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
1: वाह क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
0: हमेशा
1: हमेशा आपके साथ रहता है, कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना आपको उठने में मदद करता है,
0: मदद करती है।
1: आप
0: मेरी मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की हैं, शी इज़ वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज़ गॉट टू डू विद माई मदर, क्योंकि वो हमेशा मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है, उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएँ होंगी जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन।
1: जी कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है। तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, यहाँ मैं प्ले करना चाहूंगी।
0: तो माँ के जब माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है लुक्का छुपी बहुत हुई।
1: जी जी जी
0: वो बहुत ही बेहतरीन गाना है, एंड हाँ। वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में।
1: जी जी जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
0: बहुत ही अच्छे मुद्दे थे, एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं, जो फाइटर पायलट बचे थे उनके।
1: जी
0: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोर्समेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना।
1: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है, और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तनवर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज टू हैव कर्नल तनवर ओवर हियर हु हैज सच काइंड ऑफ, ये कहूँगी मैं, सोच है जिसके पास, जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और किससे बात करने के बाद ना जाने कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना तो लगता है कि कुछ कहानियां हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रही हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। खासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश

0: के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर, मुझे पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है, मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया, जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा, और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्ज़ाम दिया मैंने NDA का, और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का ये जो सफ़र है, सफ़र नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पॉस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट, यस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर, और कहीं ना कहीं आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए। फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज़ ही करने को बुलाते हैं। आर्मी में बोलते हैं चूज द हार्डर राइट देन द ईजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद मान रखा है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी। हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो हैं लहू के बह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जी रहे हैं उसे आज भी। लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए, कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
1: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में, मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूँ मैं, और ये शायद फोर्थ टर्म था, और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें बुजुर्ग बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहाँ पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज़्यादा करते हैं। उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन, और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती। खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी। फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीज़ें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ अंधाधुंध भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे, हमने कुछ दिमाग लगाया, और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती, और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना, तब बहुत मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे कर तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई। तो उससे उससे मेरे को ज़िंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
0: वाह क्या बात है। अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक जरूर पहुंचाया जाए, और आगे का कारवां आप ही की जुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मैं कितनी ही लोगों की कहानियाँ एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें YouTube के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई ऐसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 1997 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून दो

0: साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब 2 साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफ़ी कोर्समेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे एक मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे APS धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी और आप उनके साथ कॉलेज में थे। आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोर्समेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास लाके खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास लाके खड़ा कर दिया और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई। हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th NDA 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
1: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहाँ साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
0: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अफसर लेता है उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूँ, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं, और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
1: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है, हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पर निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है?
0: बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे है, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं वो क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता? पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये भय, डर, खौफ काफ़ी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड

0: मैं एक बैटरी कमांडर हूं चाहे जो भी हूं, उस कमांड को सक्सेस करना है मैं। और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा, मैं उसके लिए एक्सेप्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो चाहे मेरी जान जाए, लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूंगा। और ये ऑफ कोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सके।
1: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
0: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस है, एस्प्रिट डी कोर है भारतीय सेना का, जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
1: जी जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कुछ जो जो जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज़ होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे, उसमें काफ़ी फ़र्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूँ, कॉरपोरेट में जैसी कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
1: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
0: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जिन जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नैयर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा हमेशा, लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था, कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीज़ों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहां पे ब्रिगेडियर राणा है उदाहरण बॉर्स, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण हैं कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशस्त्र हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रहे हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है, पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से, और उन्हीं के नाम ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की, आपके मिशन्स के बारे में बात की, आपके अपने जो कोर्स किया एनडीए के आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए करल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है, एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी सी, तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, एक घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए, बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो, और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला। माई वाइफ वॉज इन सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
0: सो स्वीट,
1: एंड तो पहली बार मेरे को काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, मैं तो अफसर था, वो शी वॉज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअल में।
0: अच्छा।
1: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, एक साल बाद हमारी इंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004

0: 25 फरवरी को हमारी शादी हुई और ज़िंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
1: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फ़ौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊँगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, माई वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज़ लिसनिंग टू मी। तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइफ्स आल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कहीं अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ। हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता। तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं एक कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में। पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफ़ी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
1: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, उन तमाम ऑफिसर्स की है जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन काफ़ी कारगर साबित होती हैं,
0: बिल्कुल
1: नित्य प्रति कार्य करती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रखती है। और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स।
0: इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं बता रहा था आर्मी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
1: कोई ऐसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
0: बहुत याद आता है। ऑफकोर्स माई वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज ऑल्सो प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड।
1: क्या बात है।
0: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना, और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए हैं मेरे को, अभी तक मेरी आंखों के सामने वो नजर आना आ जाता
1: है। यानी कि वो पल जिसमें उन्होंने डांस और उनका नृत्य कहीं ना कहीं आपको लुभा गया। वाह क्या बात है। कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है, तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो उस नगमे का जिक्र आपने यहाँ पर कर दिया है, तो क्यों ना नाम के लिए ये नगमा हम यहाँ से प्ले करें।

0: और हम भी हरदम हर पल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफ कोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं, तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। इंडिया में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ, मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं, मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है, वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ। मेरा बेटा अभी अरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है। जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं भी नहीं मिल सकता।
0: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया, एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
1: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है। मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से

0: मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला, और हमेशा मैं आभारी रहूँगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे, ब्रिगेडियर होती था, ब्रिगेडियर होती थे, जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
1: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
0: आज की युवा को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो सिर्फ ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा।
1: जी
0: आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहां पे हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूं कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी

0: भी है जो सिर्फ ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा।
1: जी
0: आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहां पे हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूं कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आएं और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
1: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें। उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी जिंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुँचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम ज़रूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तनवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1310वीं कड़ी।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूं विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
3: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं

0: के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
0: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
1: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
0: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
1: जी,
0: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
0: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
1: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
0: स्वागत है आप सबका। श्रोताओं, एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
1: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
1: बिल्कुल।
0: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है, इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसीलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहां ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?

0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-4405-59। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है।
2: मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने
1: आप को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा फंबल था,
2: कि कोई चीज
1: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आकर
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद

मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं ना मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा

कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटी सी छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सबके बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली। इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ

अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

0: ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
1: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
2: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: hoyeng tulung haang in ngachin da muhik in hik hangro hanangin el ngita sat ita fan kanro tala arab ai ye ita kasa
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 meter അഥവാ 684 kHz-ൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
2: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है।

0: लोगों से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
3: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par लंबे समय तक भरोसा किया जा सके और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस दैट इंडिया वुड इरेडिकेट सिकल सेल डिजीज वेल बिफोर इट्स नेशनल टारगेट ईयर ऑफ 2047। शी हैज कॉल्ड फॉर कंसर्टेड एफर्ट्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर पर्टिकुलरली अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज। द प्रेसिडेंट वॉज एड्रेसिंग अ स्टेट लेवल प्रोग्राम एट ओंकारेश्वर इन मध्य प्रदेश ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सिकल सेल डे टूडे।
0: एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
2: During the program, President Murmu visited a special exhibition set up under the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission 2047. In the next phase of her visit, the President will travel to Rairangpur in Odisha, where she is scheduled to inaugurate several development projects. Prime Minister Modi will disburse incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:11 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिले कवाली।

बड़े जर्री, बड़े रुस्तम, बड़े दिलेर हैं वो, है नाम उनका अली और खुदा के शेर है वो, कि उनके पास ये फौजों की रेल पेल नहीं, अली से जंग मगर औरतों का खेल नहीं। मजाल किसकी है जो मुर्तजा से टकराए, गुरूर जहल से कह दो।

का सामना क्या कोई जानिसार करे, है किसकी ताब जो मुश्किल कुशा पे वार करे। सितम श्वार सब अपना श्वार भूल गए, और पड़ा जो शेर से पाला तो वार भूल गए। न जाने फिर भी कहां तेरा ध्यान बुजदिल है, खुदा के शेर से बचना बहुत ही मुश्किल है। नबी जो फौज के सालार है तो क्या डर है, मदद को है दरे करार है तो क्या डर है। यहीं से परचमे हक को बुलंद होना है, सितम को प्यार का एहसान मंद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिले कवाली। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब हम आपके लिए लाए हैं व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9474234000 पर। तो तुरंत फोन उठाएं और लिख भेजें अपना नाम, फिल्म का नाम, आपका पता और गीत के बोल, ताकि आपकी पसंद के गीत हम आप तक पहुंचा सकें।

श्रोताओं, पहली फरमाइश हमें आई है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से। सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना ताई गुंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गुंडाने की ये सुनना चाहते हैं कोई भी गीत। तो आइए इनके लिए हम चलाते हैं संघर्ष फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, खामोशियां फिल्म के इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने। और अब जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून सुनना चाहते हैं ये गीत।

श्रोताओं, और अब मध्य प्रदेश से फरमाइश आई है सिंघम फिल्म के इस गीत की। बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनल विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा की।

श्रोताओं, जब जब फूल खिले फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, सदर बाजार मरवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: the places over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit, Muzaffarabad and Uttarakhand today. The Met Department said heatwave conditions are very likely to prevail over Madhya Maharashtra, Marathwada, Telangana and Vidarbha till tomorrow and Uttar Pradesh till the 24th of this month. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in afternoon trade today. The Sensex shed 849 points to 76,561, while the Nifty dropped 228 points to 23,940 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index slipped 0.2%, while small-cap 100 index was trading 0.1% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes successful five-day historic visit to France and Slovakia. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target. Delhi High Court upholds centre's temporary curbs on Telegram ahead of NEET UG 2026 re-examination. India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism. And Mexico becomes first team to qualify for FIFA World Cup round of 32, defeating South Korea 1-0. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की पांच दिन की सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया, पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के

0: ने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृहमंत्री ने कहा कि एनएएफआईएस की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री एसटीपीआई पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि यह कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है।

7827928027 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना

0: परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। 02-87 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्तावनी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती, जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता, जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूत
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने
2: स्थानीय कार्यक्रमों के साथ

नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त दीपिका। हमारे कार्यक्रम सुन रहे दोस्तों को हम बता दें कि अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो 9474234000 पर अपना फोन नंबर भेज दें, ताकि हम इस फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में आपको शामिल कर सकें।

0: तो चलिए श्रोताओं, हमारी पहली कॉलर से हम जुड़ चुके हैं, आइए करते हैं उनसे बात।
1: हेलो
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं सोहन मोर्य बोल रहा हूँ, तहसील बाजपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड से।
0: जी आप कैसे हैं?
1: मैम बढ़िया हैं हम, और आप
0: जी
1: बताइए,
0: जी हम भी
1: आप और
0: ठीक।
1: आपके स्टूडियो में सब ठीक है?
0: जी हम सब भी बिल्कुल ठीक
1: जी,
0: हैं।
1: और
0: हमारे यहाँ
1: आपके
0: रीति
1: वहाँ का
0: में
1: मौसम,
0: जी
1: मौसम कैसा आपके वहाँ का?
0: हमारे यहाँ तो काफ़ी बारिश हो रही है। आप बताइए उत्तराखंड का हाल कैसा है, वहाँ पर कैसा मौसम है?
1: अभी तो यहाँ बारिश हो रही।

0: कुछ नहीं है, लेकिन धूप काफी तेज हो रही है।
1: अच्छा, तो काफ़ी
0: हाँ
1: गर्मी
0: जी मैम,
1: होगी
0: हाँ गर्मी तो बहुत है मैम यहाँ।
1: जी। तो चलिए बता दीजिए हमें, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मैम फिल्म का नाम है ये रात फिर आएगी, और गाने के बोल हैं मेरा प्यार वो है के मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा।
1: जी तो ठीक है
0: जी
1: सोहन जी, हम आपका आपकी पसंद का ये गाना आपके लिए प्ले करते हैं, सुनिएगा
0: बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद मैम।

0: तो श्रोताओं, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं आसाम से, रोमेश जी। तो चलिए आइए करते हैं उनसे बात। हेलो हेलो
1: हेलो।
0: डियर फ्रेंड्स।
1: हाँ जी, पहले मैं बेतुनी स्टेट गोलाघाट आसाम से रमेश पात्र आपसे बात कर रहा हूँ।
0: जी, रोमेश जी बताइए कैसे हैं।

0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज इस कार्यक्रम में?
1: हम तो अच्छे हैं। आज गाना गाना आज होगा मेरा चॉइस, फिल्म का नाम होगा विजय पथ।
0: जी, इस फिल्म
1: और
0: का कौन
1: गाने
0: सा
1: के
0: गीत?
1: बोल, गाने के बोल होगा सागर संग किनारे है।
0: जी, तो रोमेश जी आप क्या करते हैं?
1: मैं अब रिटायर टीचर हूँ, रिटायर हुआ हूँ,
0: जी, तो कितने साल हो गए आपको रिटायर होके?
1: दो साल हो गया।
0: जी, तो घर पर कैसा लग रहा है आपको ये समय बिताने
1: घर
0: में अभी?
1: पर, घर पर अच्छा ही लगता है।
0: जी
1: शाम और सवेरे सवेरे और शाम ट्यूशन क्लास लेता हूँ,
0: जी जी
1: और बाकी टाइम हम रेडियो से बिजी रहता हूँ।
0: जी
1: रेडियो मेरा साथी जैसा हो गया है। करता
0: जी तो आप अपने स्कूल के दिनों को मिस करते हैं जब आप जाया करते थे?
1: हूँ।
0: जी, तो चलिए रोमेश जी, हमें आपका ये गाना मिल चुका है, बहुत ही प्यारा गाना है, हम आपके लिए प्ले करते हैं।
1: दो आदमी साथियों का नाम ले सकता
0: जी,
1: हूँ?
0: जरूर जरूर जी, लीजिए।
1: हाँ, अमल बसुमतारी,
0: जी
1: बाइकल मुंडा,
0: जी
1: विमल बसुमतारी है, चंद्रकांत
0: जी
1: तायड है, मेरा धर्म पत्नी रुनु पात्रो भी है साथ
0: जी
1: में
0: जी
1: बैठा है, और भगवान सिंह परमार, रमेश प्रजापति, पूरन वर्मा और राकेश जी है, और सभी के साथ ये गाना सुनना चाहता हूँ।
0: जी तो चलिए हम ये गाना आपके लिए प्ले करते हैं, आप सबके साथ सुनिए।
1: अच्छा, थैंक यू।

0: श्रोताओं, अब हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं एमपी से, भगवान सिंह। तो आइए करते हैं अब उनसे बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो, नमस्कार दीदी।
0: जी नमस्कार, बताइए कौन कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं। हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दे दें।
1: राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी, तो भगवान जी बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप।
1: दीदी फिल्म का नाम है मीरा का मोहन और गाने के बोले सारी दुनिया प्यारी पर तू है सबसे प्यारा।
0: जी, और हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आप करते क्या हैं।
1: दीदी हम खेती किसानी करते हैं।
0: जी, तो रेडियो सुनना पसंद करते हैं।
1: जी रेडियो का तो दीदी बचपन से ही शौक है मुझे। दीदी
0: जी, तो कौन से कार्यक्रम आप ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं।
1: आपके यहाँ से तो वो ये वाउड वाला कार्यक्रम भी सुनते हैं, सुबह 10 बजे आता है संडे के दिन वो भी सुनते हैं, शाम को 7:30 बजे आता है वो भी सुनते हैं दीदी,
0: जी
1: और
0: जी
1: मुझे 3:30 बजे आता है ना यूं ही गाते रहो वाला, वो वाला भी अच्छा लगता है दीदी।
0: जी तो चलिए भगवान जी, हम आपका गाना मिल चुका है तो हम आपके लिए ये प्ले कर देते हैं, सुनिएगा।
1: जी हाँ दीदी, बहन पूर्णिमा जी है बिजुपुरम से, उनको डेलीकेट रहेगा। केसर सिंह राजपूत जी हैं,
0: जी
1: राम बाबू शर्मा जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, राकेश जी हैं शिमला से, बहन संगीता देवनाथ जी, आशुतोष देवनाथ जी, अविनाश तेली जी हैं, पूरन
0: जी
1: वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं, शिवा लोहट जी, धर्मवीर दादा हैं, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी। आसाम से हैंगे विमल अमल और रमेश पात्र जी, इन सबके साथ सुनेंगे दीदी।
0: जी तो चलिए हम ये गाना आपके लिए प्ले कर देते हैं, आप सुनिए।
1: धन्यवाद दीदी।

0: श्रोताओं, अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं जो है यूपी से। उनका नाम है अजीत शर्मा। आइए अब करते हैं उनसे बात। हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: नमस्कार,
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं अजीत शर्मा, औरंगाबाद जिला शामली।
0: जी अजीत जी, सबसे पहले हमें अपना गाना बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गाने को बोले

0: फिल्म का नाम है। हाँ
1: हेलो
0: जी
1: जी, आपकी आवाज़ कट गई। एक बार फिर से अपना गाना बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: झूठ बोले कौआ फिल्म का नाम बॉब।
1: जी, तो बॉबी फिल्म का ये गीत हम अजीत आपको ज़रूर सुनवाएंगे। उससे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि आप क्या करते हैं।
0: हम साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं, साइकिल
1: जी
0: रिपेयरिंग का काम करते हैं।
1: जी तो कितने समय से कर रहे हैं आप ये काम?
0: हाँ, ये मुझे 20 साल हो गए करते।
1: जी, तो काफ़ी अनुभव होगा आपको इस कार्य में।
0: हाँ जी,
1: जी, तो किस तरीके के गीत आप सुनना पसंद करते हैं, पुराने गीत या आजकल के नए गाने जो हैं वो?
0: पुराने गीत सुनना पसंद करते हैं।
1: जी, तो चलिए अजीत जी, हमें आपका गाना मिल चुका है, हम आपके लिए प्ले कर देते हैं, सुनिएगा।
0: धन्यवाद।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त दीपिका। अब इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
5: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुँचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: हमारे द्वीपों में तो इस समय काफी वर्षा हो रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा है? वहाँ का हाल क्या है?
1: यहाँ पे बादल छाए हैं मैम और ठंडी ठंडी हवाएं चली हैं।
0: जी, तो
1: जी
0: मौसम तो काफी सुहाना है। तो चलिए, ऐसे में हम आपका गाना आपके लिए प्ले कर देते हैं। मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए आप अपना ये गीत सुनिए।
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद मैम।
0: जी।

0: श्रोताओं, अंतराल के बाद इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए ले लेते हैं हम अपना अगला कॉल। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं अनिल ठाकुर हिमाचल प्रदेश से। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार। तो हमें जल्दी से अपनी फरमाइश बता दीजिए, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: जी, रंग मूवी का सॉन्ग है, हर
0: जी
1: सवाल का जवाब नहीं मिल सकता।
0: जी
1: जी
0: तो रंग फिल्म का ये गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे अनिल जी। तब तक हमें अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं।
1: जी हम बागवानी करते हैं, एप्पल की फार्मिंग है मैम,
0: जी
1: वही काम करते हैं जी।
0: अच्छा, तो आपके घर में और कितने लोग हैं?
1: सब है मैम, मेरी वाइफ है, एक लड़की है, भाई है, मम्मी पापा हैं।
0: जी तो अनिल

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम
1: किसान। हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो श्रोताओं, लगता है हमारा इस कॉलर से संपर्क टूट चुका है। जब तक हम अपने अगले कॉलर से जुड़ते हैं, आइए सुनिए ये गीत।

0: तो श्रोताओं, अगला कॉल हमने जिन्हें किया है वो है मोनिका शैतान खारी से। आइए करते हैं उनसे बात। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम,
0: गुड आफ्टरनून मोनिका, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ मैडम, आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: जी मैडम,
0: कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज इस कार्यक्रम में आप?
1: चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी का टाइटल सॉन्ग।
0: जी, तो मोनिका जी, हमें अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर में रहती हूँ, अभी मैं बाहर में हूँ।
0: जी
1: मैं मंदिर गई थी, तो मंदिर से मैं लौट रही थी, तो आपने फोन किया।
0: जी, आप हमारी काफी पुरानी लिसनर है, आपको तो कॉल करना ही था।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, तो मोनिका जी, आप घर के जब काम करती हैं तो रेडियो सुनने का टाइम कैसे निकाल लेती हैं?
1: रेडियो चलते रहे तो मैं काम करते रहती हूँ।
0: जी, तो आपको अच्छा
1: रेडियो
0: लगता है
1: नहीं चलने से
0: जब
1: मुझे रेडियो नहीं चलने से मुझे अच्छा ही नहीं लगता है रेडियो में, मतलब
0: जी
1: काम करने का दिल ही नहीं होता है मैडम।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके जैसे लिसनर हैं इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं और आपकी फरमाइश का गाना सुना रहे हैं आपको।
1: जी,
0: तो
1: आपको कॉल करने का बहुत धन्यवाद।
0: जी, तो
1: मैं दोस्तों का
0: चलिए
1: नाम लेना चाहती हूँ।
0: जी, ज़रूर मोनिका लीजिए।
1: सबसे पहले तो आप
0: जी
1: है आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्यों के साथ,
0: जी
1: मेरी भांजी वी पलक, दीपक दस सर, बुधनी मैडम, और शादीपुर से सप्तमी कुंडू दीदी है, स्कूल लाइन से पूर्णिमा मैडम है, बिम्बलीगंज से शिप्रा है, बमप्लट से जया दीदी है, पश्चिम बंगाल से गणेश दास जी है, नैनीताल जी है, राकेश जी है, बसंती लाल जी है, दिल्ली से धर्मवीर भैया जी है, उनके दो बच्चे हैं, पंजाब से पुरुषोत्तम अंकल है,
0: जी
1: और सुनने वाले सभी दोस्तों का शुभ चाहती हूँ।
0: जी तो मोनिका जी, आपने बहुत ही प्यारा गाना पसंद करा है, तो आपकी फरमाइश पर हम ये गाना अब आपके लिए चला देते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद,
0: जी
1: थैंक यू।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में जो हमसे जुड़े हैं उनका नाम है अनिल, वो बोल रहे हैं इंदौर से। आइए अब करते हैं इनसे बात। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: डियर फ्रेंड, अजीत कक्षा ने इंदौर से बात कर रहे हैं
0: जी। अनिल, सबसे पहले हमें अपना गीत बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है एक तुझे के लिए
0: जी। और गीत के बोल?
1: गीत है लता मंगेशकर, SP बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में
0: जी।
1: और गीत है हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे
0: जी। तो चलिए अनिल जी, हमारे पास वक्त की थोड़ी पाबंदी होने के कारण हम आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, हम जल्दी से आपका ये गाना आपके लिए प्ले कर देते हैं।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स यहीं पर समाप्त होता है।

100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र। इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। कुछ अनमोल गीतों को माला में पिरोकर हम हाजिर हैं आपकी सेवा में। उम्मीद है ये सभी गीत आपको जरूर पसंद आएंगे, क्योंकि गीत है तो संगीत है, और जीवन में संगीत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो चलिए, आधे घंटे के सफर में आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए। हसीना मान जाएगी, इस फिल्म में अख्तर रोमानी, प्रकाश मेहरा और कमर जलालाबादी के गीतों को संगीत से सजाया कल्याण जी आनंद जी ने। 1968 में मंगत राम फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में अभिनय किया शशि कपूर, बबीता, अमिता, जॉनी वॉकर, यूनुस परवेज और मनमोहन कृष्ण ने। अख्तर रोमानी का लिखा ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपके लिए।

आप तो ऐसे न थे, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। गीतकार इंदीवर और निदा फाजली, संगीतकार उषा खन्ना तथा कलाकार थे रंजीता, राजबब्बर, दीपक पराशर, तमन्ना, मदनपुरी, ओम शिवपुरी और कल्पना अय्यर। एमके एंटरप्राइजेस के बैनर तले 1980 में बनी इस फिल्म के निर्देशक थे अम्बरीश संगल। मोहम्मद रफ़ी की दिलकश आवाज़ का हर कोई कायल है। लीजिए इसी फिल्म का एक गीत आप भी सुनिए।

आमने सामने। श्रोताओं, अब एक गीत इस फिल्म से। ये फिल्म 1967 में साइट एंड साउंड मूवीज के बैनर तले सूरज प्रकाश के निर्देशन में बनी थी। इस फिल्म में शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी और राजेंद्र नाथ ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। गीत लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशक हैं कल्याण जी आनंद जी।

चित्रालया पिक्चर्स के बैनर तले। फिल्म ने मुख्य भूमिकाएं निभाई राजेंद्र कुमार, वहीदा रहमान, कामिनी कौशल, बलराज साहनी, अजित, राजेंद्र नाथ और शिवाजी गणेशन ने। गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। श्रोताओं, पुराने जमाने में जब फिल्म बनती थी तो गीत संगीत का काफी महत्व होता था। अब इसी गीत को लीजिए, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा। गीतकार ने कितनी खूबसूरती से गीत की रचना की है, आप भी लुत्फ उठाइए इस गीत का।

जनता चित्रा प्रोडक्शंस के बैनर तले 1959 में निर्देशक तारा हरीश ने फिल्म बनाई थी काली टोपी लाल रुमाल। फिल्म के निर्माता थे देवी शर्मा। मुख्य भूमिका में थे शकीला, चंद्रशेखर, कुमकुम, आगा, के एन सिंह और नैना। संगीतकार चित्रगुप्त, गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने। हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, जी तो नहीं चाहता है आपसे विदा लेने का, पर वक्त के तकाजे को देखते हुए इसी उम्मीद के साथ कि अगले कार्यक्रम में कुछ और गीतों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। प्रस्तुति स्वर मीना प्रकाश की थी। 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
1: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है।
2: জীবন এখন বড় ফাস্ট, তাই বাড়ি বসে হ্যাসল ফ্রি ব্যাংকিং এর জন্য সুইচ করুন SBI প্রিমিয়ার ব্যাংকিং এ,
3: যেখানে আপনি পাবেন ডেডিকেটেড ভার্চুয়াল রিলেশনশিপ অ্যাসোসিয়েট, যিনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনাকে স্মার্ট অ্যাডভাইস দেবেন এবং সমস্ত কাজ কমপ্লিট করবেন।

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुंच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसते खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज्ज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिले।

उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको पता ही नहीं चलता था।

अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांध सी बिखर गई। क्या करूं बिट्टो, मैं क्या करूं, लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मनस्थिति में उनका हाथ थामे बैठी बस सांत्वना देती पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सखारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहाँ जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी

0: मुझे तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीजों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है? आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। अनुभा ने उसके हाथों को पकड़कर अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बातें करते हैं और उससे ही आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फफक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में।

मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहाँ? सिर्फ अपने लिए कोई अलग सा स्थान भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूं।

बताती चली गई। उसके पापा के वॉशरूम में होने के समय लगातार बजती फोन की घंटी और मैसेज के नोटिफिकेशन से किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर उसने उनका फोन उठा लिया था और सब देखते ही मानो उसकी विश्वास की दुनिया बिखरती ही चली गई। साथ में ही अपने फोन में सुरक्षित उसके पापा अरुण की उस दूसरी स्त्री के साथ की सारी फोटो और उनके फोन की चैट की स्क्रीनशॉट भी दिखाने लगी। ये सब सुनकर अनुभा एकदम स्तब्ध रह गई। स्वयं को मजबूत करती उसने माँ को समेट लिया। माँ, सबसे पहली बात यह है कि आप स्वयं में ही बहुत सशक्त हैं। आप न तो मजबूर हो सकती हैं और ना ही कमजोर। आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि 2-3 किलो के वजन को स्नेह से अपने गर्भ में वहन करती रहीं और उस अबोध शिशु को अपने स्नेह और संस्कारों से इतना सामर्थ्यवान कर दिया है कि वो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के साथ ही दूसरों का भी सहारा बन सके। वह कुछ सोचती सी मानो एक पल में ही किसी निश्चय पर पहुंच गई। सबसे पहले आप खुद को बेचारी और बेसहारा समझना और मानना बिल्कुल बंद कीजिए। और कमजोर तो आप पढ़ ही नहीं सकती हैं। आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो आप यहां बिल्कुल नहीं रहेंगी। क्या हुआ अगर नाना जी और नानी माँ नहीं रहे? आपकी बेटी, आपकी प्रतिछाया, मैं तो हूं ना आपके साथ, आपके पास हरदम। अनुभा ने अपनी हथेलियों में माँ की आंखों से बहने वाले आंसुओं को चुन लिया। आप अभी मेरे साथ चलेंगी और आपको आपके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी और वादा मेरा है। पर माँ, मुझे एक बार पापा से भी सवाल करने ही हैं। वो अपने किए से मुक्त नहीं हो सकते। बस आज की शाम का समय मुझे दे दीजिए। विभा की पलकें एक बार फिर बह चली। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या फायदा उनसे बातें करने का, और क्या बात करनी है? मेरे पूछने पर उन्होंने कह ही दिया है कि जो भी करना हो वह करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। अब वो अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे। मुझको दिक्कत हो तो जहां जाना हो चली जाऊं, नहीं तो उनकी सेवा करती हुई यहीं पड़ी रहूं।

झुकती हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली दिवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतजार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज देने लगे, विभा विभा कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा, जो पास के कमरे से सब देख रही थी, वहां आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?

अनुभा उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर परिवार समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन मिल गया तुमको? अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर हर सुख दुख में उसका साथ देने पर उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए? अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है। शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला? क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

अनायास ही अनुभा की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़प कर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ मैं कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मेरे धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई ना कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर ना करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी तब भी कोई ना कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे उसके पापा का फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

चौंक गया। क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तल्खी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूं, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो। इसलिए ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी का हमारी दूसरी सभा में स्वागत है। शाम के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम पांडुली वणगम तमिल अमुदम वणकम नेयर्गले।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: இத்துடன் இன்றைய தமிழுங்கும் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. நாளைய தமிழுங்கும் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். வணக்கம் நேயர்களே.
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना तमिल कार्यक्रम. ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है. शाम के 5:10 होने को है. आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार मेला 2026 का नई दिल्ली के विज्ञान भवन से सीधा प्रसारण. श्रोताओं, इस कार्यक्रम के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए.

0: अब हम आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चले।
1: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
2: द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड ऑलरेडी इज इन विज्ञान भवन एंड इज इन अ सेपरेट हॉल वेयर इज हैविंग अ टॉक अ डिस्कशन विद द बेनिफिशियरीज हु आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड टुडे फ्रॉम दिस this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister, and then after that he'll be coming over here in, say, in a short while he'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they are flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they are numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it will be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
1: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
2: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. And now you see, everything is digital. So India's also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs. And the total budget is for this is about 99,446 crores.
1: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
2: या दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस्क, व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार। What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through for getting the number, and 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डाले तो

0: फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में। और हाँ बोलो इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है। तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हो और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
1: पीपल विल फील सिक्योर, ओके द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प अस आउट सो वी शुड नॉट फील दैट ओके आई एम नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग बट let the this prime minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? Rozgar ya karobar साथ है
0: भारत सरकार जी। और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे। और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है आसानी से सब पहुंच सके और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी।
1: या एंड यू नो दिस प्रोग्राम ऑपरेट्स अंडर ड्यूअल इंसेंटिव स्ट्रक्चर स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्टिव पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज जिनको पहली बार नौकरी मिली
0: पहली बार।
1: दिस कंपोनेंट फोकसेस डायरेक्टली ऑन द यंग इंडिविजुअल्स एंटरिंग द फॉर्मल वर्कफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द एलिजिबिलिटी इज न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग एन ईपीएफओ that is the employees provident fund organization registered establishment with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh and the worker must not have any prior epfo history before August 1st 2025. So these are the conditions and then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of epf wage capped to a maximum of rupees 15,000 right? And then the disbursement will be in two stages that is through the direct benefit transfer DBT through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees and the second one after another 6 months so after the completion of 12 months they'll be getting a total of 15,000 rupees and the employer also of course he also gains something every time he brings in a new worker he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in so obviously when these benefits are there even the employers they'll try to bring in as many people as possible and even the so that more and more people get employment and they also the employer also earns the employees also earn
0: बिल्कुल सभी को फायदा है बिल्कुल फायदा है और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक

0: अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
1: See, and then one more thing. See, the Minister of Employment and Labour organises and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal, that is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
0: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा. कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुंच गए हैं. तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं, और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का. इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी. चार श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान, और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति. विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
1: That's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one, the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025. It started last year till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is, means it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
0: 4 saal.
1: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members, and then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
0: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं, और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
1: एटमोस्फियर इज रियली फैंटास्टिक, इज रियली इलेक्ट्रिक, यू नो, बिकॉज सी एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स द एंट्रेंस to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
0: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है. और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
1: यस, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ, यू नो, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू होल्ड दिस नेशन. सो ही इज पुटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन देम, एंड ही सीज दैट ऑल आर एम्प्लॉयड, ऑल गेट एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ देम आर लेफ्ट विदाउट अ जॉब, बिकॉज यू नो हाउ मच फ्रस्ट्रेशन इट लीड्स टू व्हेन अ पर्सन डजंट हैव अ जॉब. सो दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन दिस एंड इज ब्रिंगिंग आउट दीज स्कीम्स. एंड देन I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one thing, one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
0: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
1: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now. And already 15 lakh people have already got their employment letter, their job letters.

0: and that's total incentive which is going to go to them is 2,400 crores.
1: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जेनरेट हुआ है.
0: yes.
1: ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1,00,000 रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए. yes, तब yes. ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे. और 20,000 से 1,00,000 तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
0: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्ट has been to generate more than 3.5 crore jobs across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, taken a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
1: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा.
0: yes,
1: ये बहुत yes. जरूरी है. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
0: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights and he has achieved it almost. He's taken India to great heights and right now and of course internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
1: 4 श्रम संहिताएं लागू. मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020. 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी.
0: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन यू नो द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इन टू द अकाउंट्स एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. प्रीति, इनफैक्ट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, यू नो, जस्ट एट द प्रेस ऑफ अ बटन 15 लाख people, beneficiaries, get the employment letter. India has also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, almost 700 people are seated over here, right up to the top.
1: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है.
0: इट्स फुल, नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी. पीपल आर दे ऑल सी दे आर ऑल जॉब सीकर्स एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल दे विल बी गेटिंग द जॉब्स. दे ऑल कीपिंग द फोन्स रेडी ऑन द टेबल. सो एज सून एज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसेस द बटन इट विल कम टू द फोन दैट दे हैव गॉट देयर लेटर.
1: An amount will be transferred.
0: Yeah.
1: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं? आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार

0: के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह
1: Yes,
0: सकते हैं, है ना?
1: and see the support for employers. You know, this is the eligibility is establishments registered with the EPFO that successfully generate net new employment. To qualify, smaller firms fewer than 50 baseline workers must hire at least 2 new employees, while larger firms 50 or more baseline workers must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah? And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
0: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए और
1: yes,
0: ये बहुत
1: yes.
0: महत्वपूर्ण है
1: yeah,
0: जी
1: yeah.
0: इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे
1: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके ही इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन दिस जॉब टू मी सो एंड आई एम टेलिंग इट्स रियली गोइंग टू चेंज द लाइव्स ऑफ दीस पीपल ऑल दीस बेनिफिशियरीज हू आर सिटिंग ओवर हियर इन द प्लेनरी हॉल ऑफ विज्ञान भवन एंड दे विल बी ड्रीमिंग यू नो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू कम अप And I think they are all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be... There'll be a filming of the... Short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button. The magic button.
0: magic button.
1: yeah, that's the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top, and his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक

0: विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।
1: एंड सी द डायस, हाउ मेनी बुकेज आर देयर? द प्राइम मिनिस्टर विल बी सिटिंग राइट इन द मिडल, ऑन द राइट ही विल बी फ्लैंक्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर एंड ऑन द लेफ्ट by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the plenary hall and the dais. Just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
0: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी। और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए।
1: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they're financially independent. And very soon our Prime Minister will be coming in and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
0: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है, जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 बात करना, ये एक प्राउड मोमेंट होता है, नहीं?
1: That's true. And you know, I attended one of these days, you know, when the Prime Minister spoke to the students all over the country. Through the live telecast, you know, and you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you have got a job, you've got something, you've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given a talent in you, and He will see that it you come up in your life. So he said that if low marks will not, it's not an end to anything. So that's why, you know, here, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
0: आपने जिक्र किया बच्चों का, तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा। तालकटोरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती ही नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में। और बच्चों को लगता था परीक्षा आ रही, इसे देना तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं, है ना। तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उसे जुड़ जाते हैं। और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं, तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से।
1: Yes, and one more thing, you know, when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know, and even the children, they feel so comfortable, the young people also feel comfortable, for not only young, you know, old people, whomsoever he talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even

0: During this Independence Day celebrations, you know, he goes among the children, goes and mingles with them. And what a beautiful atmosphere, you know. So all these things, he has got all these qualities, you know, to mingle with people and take your, he listens to your problems. That is the greatest thing with our Prime Minister. He listens to your problems and he tries to solve them.
1: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है
0: yes.
1: फिर तो राह रुकेगी नहीं आप जहाँ जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी
0: yeah.
1: है ना
0: एंड सी हु एक्सपेक्टेड दैट 3.5 करोड़ पीपल आर गोइंग टू गेट जॉब्स इन इंडिया राइट द इम्प्लीमेंटेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड 15 लाख हैव ऑलरेडी गॉट इट टुडे दे विल बी इट विल बी कंफर्म फॉर देम थ्रू द प्रेस ऑफ दैट बटन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड देन ओवर द ईयर मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And the Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment, they have always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they have generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some may get very meager amount, some get a good job. But it helps them. At least they don't starve. They get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: जब हम परीक्षा देखकर पास करते हैं हमारा रिजल्ट आता है एंड्रू तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी और जब आपकी नौकरियां बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया नहीं
0: yes.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूंगी रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार
0: सो इन फैक्ट द पर्सन राइट इन फ्रंट ऑफ अस यू नो There are deaf and dumb people also over here, and there's one person.
1: Translate kiya.
0: Yeah, he's translating through action. It's really interesting to see him. You know, the way he's doing the music, everything, and his say, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions. You know, and it's really very interesting. You know, and just see the people over here. You can see the people; they're all seated, waiting anxiously for the. The letters to come on the mobile. In fact, most of them have got it, but still, it will be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा
0: yes.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है ज्यादा नहीं और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे बातचीत खत्म ना हो नहीं
0: या आई थिंक एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड दे आर ऑल इन अटेंशन एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग विद अदर डिग्निटरीज ही विल बी टेकिंग हिज सीट ऑन द डेज एंड वंस ही कम्स इन द प्रोग्राम विल बिगिन ही विल बी फेलिसिटेटेड विद अ बोके बाय वन ऑफ द बेनिफिशियरीज That will be a privilege for the beneficiary, the student, young student, who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
1: एक बार
2: जोरदार तालियां हो जाए देवियों और सज्जनों तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल
3: माय भारत वॉलंटियर्स आप सभी का स्वागत
0: एवं प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड ही हैज टेकन हिज सीट ऑन द डेस्क
3: प्रधानमंत्री जी हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं

0: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
1: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया.
2: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री सिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें. एक बार जोरदार तालियां.
1: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने.
2: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है. यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है.
3: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविय जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे.
0: And now the welcome remarks.
2: जोरदार तालियां हो जाएं.
0: By Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है. नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है. और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था. लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है. आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी. उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा. पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी. दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा. वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है. देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है. महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है. फिक्स टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है. जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है. 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए. सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का नियम

0: कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आजादी के पहले बनी है, और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे, और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है, और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया, और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए, मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा, उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है, उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: yeah.

0: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
1: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
2: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
3: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
2: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
4: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
5: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
0: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And that was a short film. And now very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button and you can see the people cheering.
6: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।

0: प्रधानमंत्री जी 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
1: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
0: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
2: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
0: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
2: डाइस पर
3: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव,

मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर, और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है, और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है, और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान
नए रोजगार का सृजन करता है।

सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है, और कभी बड़े होने की संभावना उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए, और ये उद्योग को भी जरूरत होती है, और इस योजना से वो द्वार भी खुला है, और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था, उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है, और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है, करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं, और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना, और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है, और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि इतना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग

को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है।

मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है, लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप, और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है। और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है, और यही

भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं। और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों।

साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करें और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता

0: और विकसित भारत 2047। जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होके रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओ, संध्या के 6:33 हुए हैं। अब सुनिए हमारे क्षेत्रीय समाचार एकांश के सौजन्य से कार्यक्रम समाचार तरंगिणी।
5: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है समाचार तरंगिणी।

इस अंक में G7 शिखर सम्मेलन, विकसित भारत युवा संसद, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और प्रधानमंत्री आवास योजना।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करे। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। उन्होंने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्रों के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। नई दिल्ली में चल रहे विकसित भारत युवा संसद का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 16 जून को राष्ट्रीय स्तर पर उद्घाटन किया। इस आयोजन से युवा नागरिकों को शासन, नीतिगत विचार विमर्श और संसदीय कार्य प्रणाली की व्यवहारिक समझ प्राप्त हो सकेगी। विकसित भारत युवा संसद का एक ऐसा आंदोलन है जो भारत के युवाओं की ऊर्जा, विचारों और आकांक्षाओं को राष्ट्रीय चर्चा में शामिल करता है। संसद में प्रत्येक टीम से एक प्रतिनिधि, नारी शक्ति वंदन, समावेशिता को बढ़ावा देना और विकसित भारत 2047 विषय पर सदन को संबोधित करेगा। प्रत्येक प्रतिनिधि को बोलने के लिए 3 मिनट का समय मिलेगा।

युवा प्रतिभाओं के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए 17 जून को विकसित भारत युवा संसद 2026 पुरस्कार प्रदान किया गया। द्वीप समूह के सांसद विष्णु पद्रे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा कैपिटल हेड के अंतर्गत लगभग 127 करोड़ रुपए की विकास निधि उपयोग न कर सरेंडर किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की। इस संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जिम्मेदारी तय करने और मामले की व्यापक समीक्षा कराने की मांग की है। सांसद ने कहा कि वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत लगभग 555 करोड़ रुपए के पूंजीगत बजट में से बड़ी राशि खर्च नहीं हो सकी और अंततः वापस करनी पड़ी। उनके अनुसार अंडमान लोक निर्माण विभाग ने 36.84 करोड़ रुपए, शिपिंग विभाग ने 20 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग ने 19.43 करोड़ रुपए, आपदा प्रबंधन विभाग ने 12.81 करोड़ रुपए, राज्य परिवहन सेवा ने 9.11 करोड़ रुपए, विद्युत विभाग ने 7.21 करोड़ रुपए तथा शिक्षा विभाग ने 4.59 करोड़ रुपए सरेंडर किए। पिछले 5 वर्षों में प्रशासन द्वारा यूटी कैपिटल हेड के तहत लगभग 705 करोड़ रुपए तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए यानी कुल 908 करोड़ रुपए की राशि उपयोग नहीं हो सकी। सांसद विष्णु पद्रे ने दक्षिण अंडमान के प्रात्रापुर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 213 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों की शिकायत को उठाते हुए कैनरा बैंक से आवास इकाइयों के पूर्ण निर्माण और औपचारिक हस्तांतरण तक ईएमआई वसूली तत्काल स्थगित करने का आग्रह किया है। सांसद ने कहा कि श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद एनबीसीसी और लाभार्थियों के बीच हुई बैठकों में यह सहमति बनी थी कि फ्लैटों का निर्माण पूरा होने और कब्जा मिलने के बाद ही ईएमआई वसूली शुरू होगी। इसके साथ ही परियोजनाओं में देरी से उत्पन्न अतिरिक्त ब्याज भार को कार्यान्वयन एजेंसियां वहन करेगी या उसका समुचित समाधान करेगी। उन्होंने बताया कि परियोजना अभी अधूरी है और लाभार्थियों को कब्जा भी नहीं मिला है। इसके बावजूद उनके बैंक खातों से ईएमआई कटौती शुरू हो गई है। श्री रे के अनुसार एसबीपीएमसी ने भी 13 और 23 अप्रैल को बैंक को पत्र लिखकर ईएमआई स्थगित करने का अनुरोध किया था। परियोजना अब 30 दिसंबर तक पूर्ण होने की संभावना है। सांसद विष्णु पद्रे ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री से हस्तक्षेप तथा परियोजना में हुई देरी की जांच कराने की भी मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के आयोजन के हिस्से के रूप में डॉक्टर आरपी अस्पताल मायाबंदर द्वारा कर्मटांग समुद्र तट पर एक बीच योग शिविर का आयोजन किया गया। स्वस्थ जीवन, सकारात्मकता और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभागियों द्वारा खुले आसमान के नीचे और समुद्र के किनारे विभिन्न योग आसनों का अभ्यास किया गया। इस दौरान प्राणायाम सत्र भी आयोजित किया गया जिसमें प्रतिभागियों ने मानसिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए श्वास संबंधी प्राणायाम का अभ्यास किया। इस अवसर पर डॉक्टर आरपी अस्पताल मायाबंदर की चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद डॉक्टर प्रियंका इकबाल और योग प्रशिक्षक मंगत भगत ने प्रतिभागियों को योग को अपने दैनिक जीवन के हिस्से के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में आयुष विंग स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने दक्षिण अंडमान के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर फ्लैश मोब कार्यक्रमों का आयोजन किया। एक कार्यक्रम बमुफ्लैट पुलिस स्टेशन के सामने और गोलघर एवं भातुबस्ती जंक्शन पर आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का नेतृत्व योग प्रशिक्षकों और स्वयंसेवकों की टीम ने किया जिन्होंने लयबद्ध गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाते हुए योग का प्रदर्शन किया। यह पहल स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग के विषय को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। वी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 15 जून को यात्री सुविधा दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यात्रियों को यह संदेश देना है कि हवाई अड्डा प्रशासन

प्रशासन उनकी सुविधा, सुरक्षा और समय बचत को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इस अवसर पर यात्रियों की सुविधा, आधुनिक सेवाओं और हवाई अड्डे पर उपलब्ध बेहतर व्यवस्थाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। इस तरह के कार्यक्रम देश भर के कई हवाई अड्डों पर भी आयोजित किए जा रहे हैं। हवाई अड्डा प्राधिकरण के अनुसार बीते वर्षों में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुनियादी ढांचे और यात्री सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यात्रियों की सुगम आवाजाही, तेज सुरक्षा जांच, डिजिटल सेवाएं और बेहतर सुविधाओं ने हवाई यात्रा के अनुभवों को और अधिक सहज बनाया है। यात्री सुविधा दिवस के दौरान यात्रियों का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और जनहित से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन भी हुए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग तथा श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सत्र में लगभग 55 अधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करना और CPCB पोर्टल पर भारी मात्रा में कचरा पैदा करने वालों की पहचान, मैपिंग, जियो टैगिंग और पंजीकरण पर मार्गदर्शन प्रदान करना था। कार्यक्रम में अधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत अनुपालन आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके अनुसार नियम 6 के तहत प्रत्येक बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से संबंधित स्थानीय निकाय के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है। शहरी स्थानीय निकायों को सर्वेक्षणों के माध्यम से बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान करने, इन चिन्हित कचरा उत्पादकों की जियो टैगिंग करने और हर साल 1 अप्रैल तक पोर्टल को अपडेट करने के निर्देश दिए गए। सभी बल्क वेस्ट जनरेटर सेट को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को केंद्र के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पोर्टल पर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया गया है। क्लिनिकल रिसर्च यूनिट होम्योपैथी की ओर से हाल ही में CISF यूनिट में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों के लिए स्वास्थ्य कल्याण और निवारक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह जागरूकता पहल आयुष मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन के तहत आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य CISF कर्मियों और उनके परिवारों के बीच साक्ष्य आधारित आयुष स्वास्थ्य देखभाल कल्याण रणनीतियों और निवारक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में इंस्पेक्टर आर चिदंबरम और इंस्पेक्टर कल्याण छेत्री ने बल्कि स्वास्थ्य तत्परता के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर शांति ने होम्योपैथी के मूल सिद्धांतों और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित प्रभावशाली अनुसंधान पहलों पर व्याख्यान दिया गया। रिसर्च फेलो डॉक्टर तन्मय हालदार ने मेटाबॉलिक सिंड्रोम और व्यावसायिक तनाव की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए बल्कि साथ किए जा रहे सहयोगात्मक अनुसंधान और देशव्यापी पहल प्रोजेक्ट मान के बारे में भी जानकारी साझा की। इस अवसर पर 54 CISF कर्मियों को विशेष होम्योपैथी वेलनेस किट वितरित किए गए। मत्स्य पालन विभाग केंद्र शासित प्रदेश योजना के तहत मछुआरों के लिए सब्सिडी कार्यक्रम, मत्स्य पालन इनपुट की आपूर्ति, आवश्यक मत्स्य पालन आवश्यकताएं लागू कर रहा है। गैर जनजातीय श्रेणी के लिए प्रवाह 50% और जनजातीय श्रेणी के लिए 75% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए आवेदक को द्वीप समूह का मछुआरा या जनजाति, उनके पास पंजीकृत गैर मोटरीकृत या मोटरीकृत मछली पकड़ने वाली नाव, साथ ही वर्तमान वर्ष सहित लगातार 2 वर्षों का वैध मछली पकड़ने का लाइसेंस होना चाहिए। इसके लिए वर्ष 2026-27 के दौरान आवश्यक मत्स्य पालन आवश्यकताएं खरीदने के इच्छुक नगरपालिका और जनजातीय क्षेत्रों के मछुआरों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन फॉर्म और विस्तृत नियम बशर्ते मत्स्य पालन निदेशालय, क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालयों और नजदीकी मत्स्य उपकेंद्रों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन 30 जून तक मत्स्य क्षेत्रीय कार्यालय या उपकेंद्र में जमा किए जा सकते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय

कार्यालय की ओर से आज शाम आपदा प्रबंधन भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभ वितरण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित एक देशव्यापी आयोजन का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नई दिल्ली के विज्ञान भवन से कर रहे हैं। इसे केंद्र कार्यक्रम की कार्यवाही का स्थानीय कार्यक्रम के दौरान सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लाभ वितरित किए जा रहे हैं। नियोक्ताओं, कर्मचारियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ योजना के उद्देश्य और इसके लाभों के बारे में जानकारी भी साझा की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसके साथ ही समाचार तरंगणी का ये अंक समाप्त हुआ। समाचार तरंगणी आकाशवाणी श्री विजयपुरम के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से तैयार की जाती है। वाचिका अनामिका सेन गुप्ता, संपादक व प्रस्तुतकर्ता अंकित कुलश्रेष्ठ।

श्रोताओं, अभी आपने सुना समाचार तरंगिणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 13वीं कड़ी।

नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, नमे प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूँ आरजे चेतन। आज हम एक ऐसे विषय उठा रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से हमने से कई लोगों की रुचि है, कार्य और जीवन में संतुलन। स्वस्थ जीवन शैली के लिए रणनीतियाँ, चाहे आप यात्रा पर हो, व्यायाम कर रहे हो या बस एक शांत पल का आनंद ले रहे हो, आइए अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के ठोस तरीके पर गौर करें। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके इस भवंडर में काम और जीवन के बीच उस मधुर स्थान को छूना एक तेज रफ्तार ट्रेन पकड़ने की कोशिश करने जैसी महसूस हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या ये सिर्फ एक पहेली से कहीं अधिक है। ये हमारी भलाई को बरकरार रखने और हमारी खुशी के स्तर को ऊपर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। जब तक ये प्रोग्राम खत्म न हो आप आराम से बैठ जाइए, क्योंकि हम कुछ व्यावहारिक रणनीतियों को उजागर करने जा रहे हैं। ये केवल आपकी सामान्य युक्तियां नहीं है, ये कार्य प्रतिबद्धताएं और व्यक्तिगत पूर्ति को संतुलित करने का नाजुक नृत्य के माध्यम से शानदार ढंग से चलने के लिए आपके भरोसेमंद रोड मैप की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस संतुलन क्रिया को थोड़ा और अच्छा संतुलन बनाते हैं। तो अब दोस्तों, इस तथ्य पर हाँ कहकर शुरुआत करें कि उस आदर्श संतुलन तक पहुंचना एक बार की मंजिल के बजाय निरंतर चलने वाला साहसिक कार्य की तरह है। इसे एक यात्रा के रूप में देखें, न कि एक पड़ाव के रूप में। चाल एक ऐसी लाए कि खोज करना है जो आपके लिए क्लिक करती है, कुछ ऐसा जो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन और जुनून को बढ़ावा देने के साथ साथ उन पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने देता है। यह सब उस जगह को खोजने के बारे में है जहां आपका काम और व्यक्तिगत दुनिया सामंजस्य स्थापित करती है, एक ऐसा माहौल बनाती है जो विशिष्ट रूप से आपका है। हाँ प्रिय श्रोता, काम में आपके समय का एक बड़ा हिस्सा लग जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे व्यक्तिगत गतिविधियां आपके शेड्यूल में लुका छुपी खेल रही है। तो आइए इस बारे में बात करें कि आत्म देखभाल कैसे करें, क्योंकि आप व्यस्त कार्यक्रम के बीच है, तरोताजा और विश्राम के उन क्षणों के हकदार है। तो आइए दोस्तों एक गेम चेंजर पर जूम इन करें, वह है

सीमाएं निर्धारित करना। नॉनस्टॉप डिजिटल कनेक्शन के इस युग में काम उस दोस्त की तरह हो सकता है जो अपने स्वागत से ज्यादा देर तक रुकता है। काम के घंटे और व्यक्तिगत समय के बीच एक रेखा खींचना अपना खुद का जादुई मंत्र रखना जैसा है। यह अराजकता में संरचना लाता है और उस भयावह राक्षस के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, हम सीमाएं तय करने की बात कर रहे हैं। आप जूम कॉल, ईमेल और कार्य से निपटने के एक दिन पूरा करते हैं। आप सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करने के बजाय आप विराम कर सकते हैं। ये सीमाएं निर्धारित करने का जादू है। ये घोषणा करने के बारे में है, ठीक है, काम करो, आपकी बारी है, अब ये व्यक्तिगत समय है। ये न केवल आपके निजी जीवन को काम के बोझ तले दबने से बचाता है, बल्कि आपके मस्तिष्क को भी वह आवश्यक विश्राम देता है जिसका वो हकदार है। काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ बैलेंस कहलाता है मेरे दोस्तों। इस तालमेल के बिगड़ने से काफी कुछ बिगड़ सकता है, इसीलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिट एंड फाइन रहने के लिए लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस का होना बेहद जरूरी है। कामयाबी के लिए घंटों घंटों तक मेहनत करना ठीक माना जाता है, लेकिन कुशल और हेल्थी लाइफ के लिए काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाइए। इसे वर्क लाइफ बैलेंस कहा जाता है। सरल शब्दों में कहे तो काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ बैलेंस है। आप प्रायोरिटीज फिक्स करें मेरे दोस्तों, प्राथमिकता तय करें। एक समय में एक ही काम करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटीज तय करना पड़ेगा। जो काम पहले जरूरी है उसे पहले करना चाहिए और गैर जरूरी कामों को बाद में करें। इससे पर्सनल लाइफ के लिए समय मिल जाता है। काम में जो छुट्टियां मिले उसे सही तरह मैनेज करें, जिससे घर के किसी जरूरी इवेंट मिस न हो। बात समझनी चाहिए कि जिंदगी में जो समय आ रहे हैं वो बीत जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे। फैमिली के साथ दोबारा टाइम भी नहीं मिलेगा, इसीलिए ऑफिस के काम के साथ साथ अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करें। हर किसी के पास एक निश्चित समय है, इसीलिए टाइम को मैनेज करना सीखें। अगर एक काम निश्चित समय पर नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी दूसरे की मदद ले। इसके लिए कभी भी हिचकिचाए नहीं। इससे काम आसानी से हो जाएगा और थकान भी आप पर हावी नहीं होगा। ऑफिस और फैमिली के लिए वक्त निकालते निकालते खुद को समय देना न भूले। अपनी हेल्थ के लिए खुद के लिए समय निकालना चाहिए। इस वक्त में जो काम आपको खुशी दे वही करें। इससे आप खुद को और दूसरों को खुश रख पाएंगे। हर चीज को पहले से प्लान करके चले, स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेन। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप अपनी पूरी दिनचर्या की सही प्लानिंग करें। इसके लिए आपको सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहली शर्त यह है कि आपको वक्त बर्बाद करने के बजाय इसको आपको फोकस करने के लिए यूज करना चाहिए। अपने बच्चों की रूटीन और फिर ऑफिस पहुंचकर वहां के कामों को पूरा करने का प्लान पहले ही करना चाहिए। हर काम का प्राथमिकता तय करें, जैसे कि मैंने आपने पहले बोला कि प्रायोरिटाइज योर वर्क। अपना होमवर्क समय पर करें, अपने लिए कुछ समय निकालें, जीवन साथी से खुलकर बात करें। वर्किंग वुमेन होने के नाते आपकी जिंदगी बिल्कुल सहज और सामान्यता तरीके से चले, इसके लिए आपको अपने जीवन साथी की मदद लेनी चाहिए। उसे हिचक तोड़कर सारी बातें करें और दोनों मिलकर घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों को आपस में बांट लें। इससे आपको परेशानी नहीं होगी और काम भी आसानी से मिल बांट कर हो जाएगा। घर का काम ऑफिस, ऑफिस का काम घर पर न लाए। ये भी सुखी जीवन जीने का मूल मंत्र है कि घर के काम को कभी भी ऑफिस में न लाए। प्रोफेशनल की तरह बर्ताव करें और ऑफिस के काम को भी कभी घर पर न लेकर जाए। ऑफिस का सारा काम वही खत्म करके आए। जो महिला घर को और ऑफिस दोनों मैनेज करती है, उनके दिमाग में कई सारे बातें चलती रहती है। इससे इन्हें तनाव भी अधिक होता है, इससे कई बार डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं। इसके लिए इन बातों का रखे ध्यान जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों, जिंदगी में हर बात को बहुत अधिक गंभीरता से न लिया करें। किसी भी चीज के बारे में दिन भर सोचते न रहना। सकारात्मक चीजें करें और नेगेटिव बातों को दिमाग में लेने की कोशिश न करें। दिन में कम से कम समय ही सही मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। काम को बाद में करने में भरोसा न छोड़ो। इससे आप अपने दिमाग को शांत रखकर अपने मेंटल हेल्थ को खुद मैनेज कर सकते हैं।

कहने को ये बात आम लगती है, लेकिन ये सच है, घर परिवार और ऑफिस के चक्कर में कई बार हम खुद को पूरी तरह से भूल जाते हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका शेड्यूल कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपनी सेहत के लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकालें। सुबह व्यायाम करने से दिन भर आपका दिमाग और शरीर अच्छा रहेगा। ये भी बेहद ज़रूरी है कि बड़ी खुशियों का इंतज़ार न करें, वक्त मिलते ही कम दिनों के लिए सही वेकेशन पर ज़रूर जाइए, कई परिवार के साथ घूमें और कभी बाहर खाने पर चले जाएं या कभी फिल्म देखने जाए। कुछ नहीं तो नहीं, अपने घर के आसपास वाले पार्क में जाके वॉक कर लीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, कुछ अच्छा सा काम जो आपको अच्छा लगे करने में, जैसे कि आपके हॉबीज रहे होंगे, आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, जो भी आपको पसंद है ये सब आप कर सकते हैं और अपने आप को खुश रखिए। With this lovely information, this is your RJ Chetan signing off for today. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye. आप Adventist Media Center द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। I repeat 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 13वीं कड़ी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब सुनिए आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुनिए। संध्या 7:05 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार। संध्या 7:15 पर आप सुनेंगे मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। फिल्मी गीत पर आधारित कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुनेंगे 7:20 पर। संध्या 7:30 पर आप युवानी कार्यक्रम सुनेंगे। रात्रि 8 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग। रोजगार समाचार व गौरवगान का समय रहेगा रात्रि 8:35। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात 9 बजे न्यूज़ एट 9 स्पॉटलाइट। 9:15 पर, 9:30 पर करंट अफेयर्स। ये सभी समाचार कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। और आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम। इन सबके अतिरिक्त रात्रि 10 बजे हमारे 100.9 एफएम चैनल पर विविध भारती मुंबई द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम छायागीत का आप आनंद ले पाएंगे। ये थे आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आप सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। कल प्रातः 5:23 को आकाशवाणी के संकेत धुन के साथ हमारी पहली सभा आरंभ होगी। तत्पश्चात 5:25 पर वंदे मातरम और मंगल ध्वनि तथा 5:30 पर अनमोल विचार और प्रभाती वंदना का आप आनंद ले पाएंगे। कार्यक्रम एग्री टिप्स में कल आप सुनेंगे जिमिकंद व गुइया उगाए कार्यक्रम कल सवेरे 5:55 पर होगा। कल सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। 6:15 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम इंद्रधनुष। सुबह 6:30 पर आप आनंद ले पाएंगे रामचरितमानस गान का 275वीं कड़ी। वतन के गीत कार्यक्रम देशगान पर आधारित इस कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे कल सुबह 6:40 पर। सुबह 6:50 पर आप सुनेंगे मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी आप सुन सकेंगे कल 7:15 पर। श्रोताओं, कल सुबह 7:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन कार्यक्रम। कार्यक्रम का विषय रहेगा निरोग जीवन का दैनिक मंत्र योग।

इस कार्यक्रम के विशेषज्ञ रहेंगी डॉक्टर नंदिनी। कल सुबह 8:30 पर आप हमारे सुगम संगीत कार्यक्रम में मेहंदी हसन के गाए गीतों का आनंद ले पाएंगे। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने सुहाने। 9:30 पर आप सुनेंगे कर्नाटक शैली में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में आप सुनेंगे TR महालिंगम के गीतों को। सुबह 10 बजे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम कशे सुनेंगे। दिन को 11 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत गुंजन। गीत अतीत कार्यक्रम का समय रहेगा कल दिन को 11:30। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे तेलुगु कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:30। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत पंकज उदास जी को। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का समय रहेगा कल दोपहर 1:30। 2:30 पर हमारी पहली सभा समाप्त होगी तथा कल दूसरी सभा में हम 30:55 पर उपस्थित होंगे दिल्ली से रिले होने वाली कार्यक्रम के साथ। कार्यक्रम रहेगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं

0: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का समय रहेगा कल दोपहर 1:30। 2:30 पर हमारी पहली सभा समाप्त होगी तथा कल दूसरी सभा में हम 3:55 पर उपस्थित होंगे दिल्ली से रिले होने वाली कार्यक्रम के साथ। कार्यक्रम रहेगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी किए जाने पर संबंधी कार्यक्रम का पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से सीधा प्रसारण।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026।
6: नमस्कार, भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल ना जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
5: जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026।
0: श्रोताओ, अभी आप आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:05 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज अंडमान पहुंचे। पहले दिन उन्होंने रंगाचांग में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध को सहमति दी। योगाभ्यास के साथ भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के क्षेत्रीय केंद्र में रुद्राक्ष का पौधरोपण कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। और गाराचरमा फीडर के रखरखाव कार्य के चलते कल कई क्षेत्रों में 6 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। संसदीय मामले एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आज राजधानी श्री विजयपुरम पहुंचे। अपने 3 दिवसीय दौरे पर आए श्री रिजिजू ने दोपहर बाद विशेष जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री श्री रिजिजू ने रंगाचांग स्थित पद्मश्री सम्मानित के चल्लमल के ऑर्गेनिक नारियल फार्म का दौरा किया तथा एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। इसके बाद उन्होंने राजधानी श्री विजयपुरम स्थित चिन्मय मिशन के आचार्य स्वामी सुधानंद सरस्वती से भेंट की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने भगवान शिव की आराधना भी की। श्री रिजिजू गुरुद्वारा लाइन स्थित पद्मश्री सम्मानित नरेश चंद्र लाल से उनके घर पर मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बुनियादाबाद में राजकीय जीबी पंत अस्पताल के सेवानिवृत्त चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. शिव शंकर से भेंटवार्ता की। अपने आज के अंतिम कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने डेयरी

स्थित बिशप हाउस में डायोसेस के बिशप विश्वासम सेल्वराज से मुलाकात की और ईसाई समुदाय को संबोधित भी किया। केंद्रीय मंत्री का दौरा कल भी जारी रहेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि यह कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी यह प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए विद्यालय शिक्षकों से स्वनामांकन आमंत्रित किए जाते हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के अनूठे योगदान को सम्मानित करना है। इस पुरस्कार के लिए मान्यता प्राप्त प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत सभी स्कूल शिक्षक और प्रधानाध्यापक इसके लिए पात्र होंगे। शिक्षकों द्वारा स्वनामांकन के लिए पंजीकरण ऑनलाइन वेब पोर्टल nationalawardstoteachers.education.gov.in पर 13 जुलाई तक कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है योगाभ्यास और बिजली। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस भी एफएम रेडियो पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के हिस्से के रूप में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के क्षेत्रीय केंद्र ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार योग अभ्यास का आयोजन किया गया। इसके बाद क्षेत्रीय प्रमुख डॉ. लालजी सिंह ने रुद्राक्ष का पेड़ लगाया। इस दौरान सभी अधिकारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उधर कंपोजिट रीजनल सेंटर ने आर्ट ऑफ लिविंग और वृक्षाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ मिलकर श्री विजयपुरम स्थित अपने परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस साल की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग के तहत आयोजित किया गया था। इसमें शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देने में योग की भूमिका पर जोर दिया गया। सीआरसी की निदेशक सुमिता मूल ने अपने संबोधन में स्वस्थ बुढ़ापे में मदद करने, जीवन शैली से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में योग को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला। वृक्षाबाद के पीएचसी की टीम ने एक विशेष वाई ब्रेक योग सत्र आयोजित किया। इसमें प्रतिभागियों को आसान योग अभ्यास सिखाए गए। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों, अभिभावकों, कर्मचारियों, इंटर्न और आम जनता ने हिस्सा लिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उद्योग निदेशालय के अंतर्गत सत्र 2026-27 के लिए एक वर्षीय पारंपरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवार 15 जुलाई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। 15 से 45 वर्ष के उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डिगलीपुर केंद्र सिलाई और वस्त्र निर्माण, सामान्य इंजीनियरिंग और बढ़ईगिरी में

0: पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। लिटिल अंडमान में सामान्य इंजीनियरिंग और बढ़ईगिरी में प्रशिक्षण उपलब्ध होगा, जबकि कार निकोबार में सिलाई और वस्त्र निर्माण, बढ़ईगिरी, जूट और जूट उत्पाद तथा सामान्य इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवार का 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण पूरा होने पर पात्र प्रशिक्षुओं को ₹1,000 का मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। ग्यारहचरमा फीडर के HT-LT लाइनों और क्षतिग्रस्त RCC हीट पोल को बदलने के कारण ग्यारहचरमा फीडर की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह कटौती कल सुबह 7:30 से दोपहर 1 तक की जाएगी। प्रभावित क्षेत्रों में लक्ष्मी मोटर, शिवाजी कॉलोनी, TR हाउसिंग, MR हाउसिंग, ग्यारहचरमा बस्ती, ग्यारहचरमा मेडिकल, काली मंदिर, TTI रोड, पंप हाउस, IMFC और ग्यारहचरमा फीडर के आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह कार्य मौसम की स्थिति पर निर्भर रहेगा। MV स्वराजदीप 21 जून को सुबह 10 श्री विजयपुरम से विशाखापत्तनम के लिए रवाना होगा। यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य सुबह 7 से 9 के बीच किया जाएगा। अतिरिक्त सामान कल दोपहर 2 से शाम 4 के बीच चढ़ाया जाएगा। अंडमान और निकोबार राज्य ओलंपिक संघ ने राजधानी श्रीविजयपुरम में 23 से 26 जून तक होने वाले ओलंपिक दिवस समारोह के लिए पंजीकरण की घोषणा की है। इस समारोह में ओलंपिक दिवस दौड़ और कई इंडोर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रतिभागी 22 जून तक अंडमान और निकोबार राज्य ओलंपिक संघ के कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू अपने 3 दौरे पर अंडमान पहुंचे। पहले दिन उन्होंने रंगाचांग में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET-UG पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध को सहमति दी। योगाभ्यास के साथ भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के क्षेत्रीय केंद्र में रुद्राक्ष का पौधरोपण कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। और ग्यारहचरमा फीडर के रखरखाव कार्य के चलते कल कई क्षेत्रों में 6 से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लगभग सभी जिलों में मध्यम गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार MV भारत सीमा कल शनिवार 20 तारीख को रात्रि 8 श्री विजयपुरम से रवाना होकर मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए जाएगा। जलयान अगले दिन यानी रविवार 21 तारीख को दोपहर 2 डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगा। जलयान MV सेंटिनल 21 तारीख रविवार को श्री विजयपुरम से सुबह 7 लिटिल अंडमान के लिए रवाना होगा। जलयान की वापसी उसी दिन रात्रि 8 लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगा। 28 तारीख रविवार को जलयान MV कालीघाट कार निकोबार के लिए लिटिल अंडमान होते हुए सुबह 7 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान अगले दिन यानी 29 तारीख सोमवार को शाम 4 कार निकोबार से लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगा। जलयान के लिए यात्री टिकट आज से ही जारी हुए हैं। MV रानी लक्ष्मी कल रंगत के लिए स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए सुबह 6 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल ही दोपहर 12 रंगत से लॉन्ग आइलैंड और स्वराजदीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगी। कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से छोड़कर MV कमोटा शहीद द्वीप जाएगी। शहीद द्वीप से जलयान कल ही सुबह 8:30 पर श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराजदीप के लिए कल सुबह 6:15 पर

फिर विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी कल ही सुबह 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए स्वराजदीप से होगी। एमबी स्ट्रेट आइलैंड कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रंगत के लिए शहीद द्वीप, स्वराजदीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए जाएगी। जलयान अगले दिन रविवार 21 तारीख को उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगी। एमबी रानी लक्ष्मी कल दिन को 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटकर शहीद द्वीप जाएगी। जलयान उसी दिन दोपहर 1 बजे पहले शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगी, फिर उसी दिन दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगी। एमबी हडबे कल दिन को 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगी। जलयान कल ही 2 बजे पहले स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगी, फिर उसी कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगी। शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर एमबी बाराटांग श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान की वापसी कल ही शाम 4:30 पर श्री विजयपुरम के लिए शहीद द्वीप से होगा। जलयान एमबी कमोटा कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से छूटकर स्वराज द्वीप जाएगी। जलयान अगले दिन 21 तारीख रविवार को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगी। श्रोताओं, अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे, अब सुनिए जन सूचनाएं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जलयानों का यात्रा कार्यक्रम, मौसम की जानकारी व जन सूचनाएं। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, संध्या के 7:20 हुए हैं। अब आनंद लीजिए फिल्मी गीत पर आधारित कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए अलका याग्निक और कमाल खान के आवाज़ों में, फिल्म जो बोले सो निहाल से। गीतकार है देव कोहली।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम
1: किसान। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी गीत पर आधारित कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

श्रोताओं, आइए अब अंत में सुनते हैं जैकपॉट फिल्म के इस गीत को। गीतकार है श्याम बकन और आवाज़ दिए है KK और श्रेया घोषाल ने।

श्रोताओ, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्मी गीत पर आधारित कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवानी।

0: नमस्कार दोस्तों। दोस्तों समय जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए हर पल का सदुपयोग करें और अपने वर्तमान को इतना श्रेष्ठ बनाए कि भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाए। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों योग भारत की प्राचीन जीव पद्धति है, जो शरीर मन और आत्मा के संतुलन तथा स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। नियमित योग करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग तनाव, चिंता और मानसिक दबाव को कम करने में सहायता करता है। योग के विभिन्न आसन और प्राणायाम मन को शांत करते हैं तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। प्रतिदिन कुछ समय योग करने से एकाग्रता बढ़ती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है और मन प्रसन्न रहता है। योग हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखने तथा जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य पूर्वक करने की शक्ति देता है। इसलिए मानसिक शांति और स्वस्थ जीवन के लिए नियमित योग को अपनी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। दोस्तों आज शुक्रवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का हमारा यह पहला कॉल। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो
0: हेलो, मेरी किन से बात हो रही है?
1: हेलो मैडम, मैं प्रेमजी चक्रवर्ती बोल रहा हूँ, आश्रम सिंह में डिस्ट्रिक्ट से।
0: जी चक्रवर्ती जी, कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहुत अच्छा हूँ मैडम, बढ़िया हूँ। अभी तो मैं फोन कर रहा हूँ आकाशवाणी से विजयपुरम केंद्र है।
0: जी
1: तो फोन लगा, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके।
0: जी, और आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मेरा मौसम तो अभी बारिश चल रहा है, बारिश का साथ धूप चल रहा है। अभी तो बारिश का लक्षण है।

0: जी
1: बारिश नहीं हो रहा है लेकिन बारिश आएगा।
0: जी चक्रवर्ती जी, आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मैं गाना सुना जा रहा हूँ, फिल्म का नाम है मैडम सैनिक और गाने का बोल ऐसे है कितनी हंसते थे हमें, कुमार सैनी जी का आवाज में गाना
0: जी, और एक गीत आप
1: दीजिए।
0: अपने किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: पहले तो मैडम आप सुनिए, आपको सुनाना चाहता हूँ, आप तो मेरा गाना सुनाएगा है ना,
0: जी
1: इसलिए पहले आप और मेरा दोस्त है अनुकुमार भट्टाचार्य जी, अविनाश जी, आशुतोष जी और जवाहरलाल बर्मन जी और जो सुता आकाशवाणी श्री विजयपुर सुना और सबको लेकर सुनेंगे मैडम।
0: जी चक्रवर्ती जी, तो चलिए सुनाते हैं आपको आपका मनचाहा गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड्स, अनिल कौशली इंदौर से बात कर रहे हैं।
0: जी अनिल जी, कैसे हैं आप?
1: इस समय हम बैंक में हैं, वहीं से आपसे बात कर रहे हैं। और अभी इंदौर का मौसम एकदम साफ है, 37 डिग्री तापमान है। बीच में जरूर तापमान अधिक बढ़ गया था, लेकिन अब काफी कम हो गया है, 37 डिग्री का।
0: जी तो अनिल जी, क्या आज आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप योग करते हैं?
1: नहीं, मैं योग करने का तो टाइम नहीं मिलता है।
0: जी
1: और, क्या है कि दिन भर बैंक के काम में इतनी बिजी रहते हैं
0: जी,
1: कि दिन भर बैंक काम होता है कि योग वैसे ही हो जाता है हमारा। दिन भर ऊपर साइकिल चलाना, टू व्हीलर चलाना,
0: जी
1: तो वैसे ही काम योग हो जाता है।
0: तो अनिल जी, आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज हमको लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम का गायक जी सुनवा दीजिए। फिल्म का नाम है एक दूसरे के लिए, और गीत है हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे।
0: जी और ये गीत आप अपने किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: गीत हम आपके साथ और आकाशवाणी विजयपुरम की पूरे टीम के साथ सुनना चाहेंगे।
0: जी तो चलिए अनिल जी, सुनाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: हेलो
0: हेलो, मेरी किन से बात हो रही है?
1: जी, मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ।
0: जी अनूप जी, कैसे हैं आप?
1: माशाल्लाह बहुत अच्छा हो, बढ़िया हो।
0: जी तो अनूप जी, मुझे यह जानना था कि क्या आप योग करते हैं?
1: योग? जी, योग तो ऐसे मैं नहीं करता हूँ। मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ
0: जी
1: थोड़ा बहुत, जैसे दौड़ में शामिल होता हो। और योगा तो ऐसे में घर घर में बैठकर तो करना चाहिए, है ना। लेकिन योग योग में तो बहुत अच्छी ये है, योग हमारे शरीर विज्ञान के एक के क्या होते हैं, मतलब बहुत अच्छे एक्सरसाइज होते हैं। प्राणायाम
0: जी
1: जो कहता है, प्राणायाम
0: जी
1: अनुलोम विलोम जो है, और ये नुस्खा बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मैं ये जो एक्सरसाइज जो होता है, इसमें घर में

0: बैठ के, ये मैं नहीं करता हूँ, हम थोड़ा बहुत रनिंग करता हूँ
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: तो सुबह उठ के रनिंग करता हूँ, 10 किलोमीटर रनिंग करता हूँ और वापस आता हूँ रनिंग करके।
1: जी जी तो अनूप जी, आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन से गीत सुनना चाहेंगे?
0: जी आज कार्यक्रम के माध्यम से वो गाना सुना दीजिए, फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम तो पता नहीं लेकिन गाने का बोल ऐसे है, रोने ना दीजिएगा तू गाया ना जाएगा, ऐसे करके गाने हैं।
1: जी
0: और फिल्म का नाम तो पता नहीं लेकिन गाने का बोल ऐसे है, कुमार सानू जी ने गाया है वो गाना और कुछ दोस्तों को मैं शामिल करता हूँ इसमें।
1: जी, तो ये गीत आप अपने किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे मेरा नजदीकी,
1: जी
0: प्रेम जी चक्रवर्ती जी है और है अविनाश जी फ्रॉम त्रिपुरा
1: जी
0: और है हमारे कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी है और अमर सिंह साहू जी और है उसका नाम क्या है विजय सिंह लखेरा जी है और श्रीकांत जोशी जी है।
1: जी तो चलिए अनूप जी, सुनाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। और अभी गर्मी पड़ रही है हमारे इधर, बरसात अभी चालू नहीं हुई है, 3-4 दिन हुई थी पहले, अभी नहीं हुई है।
0: जी तो भगवान जी, मुझे यह जानना है कि क्या आप योग करते हैं?
1: जी नहीं दीदी, योग नहीं करते, हम तो किसान है तो दीदी हमारा योग तो वैसे ही हो जाता है।
0: जी। भगवान जी, जैसे कि आपने कहा कि अभी वहाँ पे धूप है, वर्षा नहीं हुई है, तो मुझे यह जानना है कि वर्ष के इस वक्त आप कौन से फसल उगाते हैं?
1: जी दीदी, अभी जैसे बरसात चालू होगी तो हम सोयाबीन, मक्का, धान, इनकी बुआई करेंगे। मध्य प्रदेश के किसान इन्हीं चीजों को बोते हैं दीदी ज्यादातर।
0: जी तो भगवान जी, आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी, फिल्म का नाम है बागवान और गाने के बोले, पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, ये वाला गीत सुनना है दीदी।
0: जी तो चलिए भगवान जी, सुनाते हैं आपको आपका ये पसंदीदा गीत।

दोस्तों, इसी प्यारे गीत के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे युवानी कार्यक्रम का। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला के रिकॉर्डिंग।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है?
3: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया।

0: रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा, तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेशी नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है।
1: जी
0: वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति।

0: तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल श्री, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया? क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है? ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
0: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब शीत युद्ध चल रहा था जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया, और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट हैं या हित है, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाए, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय हैं रशिया के, दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया। और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा, और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए, इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश हैं। तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की, एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई उसके बारे में जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नाथेलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को खत्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया।

0: और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5,000 माओइस्ट पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपए दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओइस्ट अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओइस्ट का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया और इसके वजह से माओइस्ट तकरीबन ख़त्म ही हो गए। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब यह चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो UNLF के इंसर्जेंट थे सब ने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए, और उस वजह से काफ़ी वहाँ पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी जोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा चल रहा है। पहले ये डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफ़ी जोरों से वहाँ पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको ख़त्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहाँ पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफ़ी सुविधा पहुँच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह, नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफ़ी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल

0: भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
1: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया, और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ, उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी, और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें, तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट है, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स हैं। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहां के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोरल अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया, जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
0: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने

0: पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए और भारत का सामान मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने एफटीएस को देखें, आप हाल ही में हुए ईयू के साथ के अपने एफटीए को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने एफटीएस हैं और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सकें, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
0: अब हम रुख करते हैं एमपी नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए, तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढीलपना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार

0: सफल हुए। मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूं, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं, और सुधरने की वजह से ये है कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है, और यहां तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता था। अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा यह है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है, और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है, और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में, या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
0: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है, क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
0: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश किए गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है, और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, अब वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते

0: हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया, जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और एआई को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बनके जो उभरे, तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो यूएनएससी जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए, तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सबके बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल गैस और एलपीजी पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल गैस और एलपीजी चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल गैस और एलपीजी मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे, उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में, उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें, तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्रप्रथम की नीति रही है भारत की, और शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानती हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हम

0: सारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु, आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है, और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है। और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल। तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
4: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6-स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर अप टू 80,000।
5: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्ते लागू।
6: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:35 हुए हैं। अब आनंद लीजिए गौरव गान का।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ. इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ईबीएस और ईएसपी हैं. और माइलेज भी बढ़िया है. 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर केजी सीएनजी में. बाय ऑफर अप टू 80,000.
2: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है. शर्तें लागू.
3: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है. श्रोताओं आप आनंद ले रहे हैं गौरव गान का.

श्रोताओ, अभी आप आनंद ले रहे थे गौरव गान का। हम आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में दिल्ली से समाचार कार्यक्रम रिले होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधान

0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
0: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला

0: 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
1: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
3: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: This is the country.
6: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
0: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित

0: गठबंधन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agree to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This disbursal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सके।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी किसान भाइयों एवं बहनों को आंचल का प्यार भरा नमस्कार। किसान साथियों, सफलता सिर्फ एक ही है, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना। और ये विचार है क्रिस्टोफर मॉर्ली के। कहने का तात्पर्य है कि सच्ची सफलता वही है जब हम अपनी इच्छाओं और मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथी भी अपने मूल्यों के अनुसार, अपने तरीके से, अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते होंगे। और इसी नेक विचार के साथ चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे कार्यक्रम को और पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और किसान साथियों, आज का प्रश्न है, पनामा विल्ट किस पौधे की बीमारी है? और हम आपको तीन विकल्प देंगे। पहला विकल्प है केला, दूसरा पपीता और तीसरा नारियल। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, पनामा विल्ट किस पौधे की बीमारी है, केले की, पपीते की या नारियल की? साथियों, ये रहा आज का प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आपको सोचना है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताएंगे।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
0: किसान साथियों, आइए अब आपको मिलवाते हैं कृषि विभाग के निदेशक श्री देवाव्रत बसंतिया जी से, जो कि हमें बातचीत के माध्यम खेत बचाओ अभियान के विषय में बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं इनसे की गई बातचीत।
2: खेत बचाओ अभियान। किसान साथियों, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच कार्यक्रम में उपस्थित है कृषि विभाग के निदेशक श्री देवाव्रत बसंतिया जी। सर, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
3: धन्यवाद मैडम।
2: सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि खेत बचाओ अभियान क्या है।
3: देखिए मैडम, ये खेत बचाओ जो अभियान है वो एकदम हमारी एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय है जो आज पूरे देश भर में हो रहा है। इस अभियान को हम लोग 1 जून से लेकर 30 जून, पूरा एक माह के लिए, एक महीना के लिए उसको मतलब चलाया जा रहा है, पूरे देश में चलाया जा रहा है, अलग अलग राज्यों से कृषि विभाग के साथ। कृषि विभाग इसमें जुड़ी हुई है, मूल रूप से कृषि विभाग जो हमारी आत्मा, जो एक डिपार्टमेंट है जो ट्रेनिंग और एक्सटेंशन के लिए दायित्व लिए हैं आत्मा, उसके साथ जो कृषि में जो अनुसंधान की जो संस्था है जैसे ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर

0: रिसर्च ओलब की जुड़ी हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो ऑर्गेनाइजेशन है KVK वो भी उसमें जुड़े हैं। तो हमारे एक मिला जुला एक प्रयास रहता है कि इसी अभियान को किसानों तक तो पहुंचाने के लिए इसके लाभ, इस पर मोटा मोटा तीन चार बात मैडम मैं बोलना चाहता हूँ
1: जी
0: हमारे किसान भाइयों की। इस कृषि खेती बचाओ अभियान एक बहुत बड़ा एक संकल्प है या एक अभियान कह सकते हो, जिसमें हम कई सारी पॉइंट को एक मुख्य रूप में लिया जाता है, जैसे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना,
1: जी
0: ठीक है, रासायनिक उर्वरक के संतुलन उपयोग करना, या फिर मिट्टी का जो उर्वरता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उसको बचाए रखना, वैज्ञानिक तरीके से खेती भी करना, हाँ,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: समय उपकूल खेती भी करना। तो इसमें ये मेन मेन चीज जो रहती है, मिट्टी की उर्वरता बचाए रखना, मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार करना, और संतुलित केमिकल जो रासायनिक खाद है उसको व्यवहार करना, तो ये मेन मेन चीज हो जाते मैडम जी।
1: इस अभियान के तहत
0: हाँ जी,
1: अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस अभियान का मुख्य संदेश क्या है।
0: इसमें मैडम यही संदेश रहेगा कि हम खाद जो है कम यूज करें, क्योंकि आज देखा गया है खाद जो है

0: के स्वास्थ्य को सुधार करना और संतुलित केमिकल जो रासायनिक खाद है उसको व्यवहार करना, तो ये मेन मेन चीज हो जाते मैडम जी।
1: इस अभियान के तहत
0: हाँ जी,
1: अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस अभियान का मुख्य संदेश क्या है।
0: इसमें मैडम यही संदेश रहेगा कि हम खाद जो है कम यूज करें, क्योंकि आज देखा गया है खाद जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, जो सही मात्रा नहीं है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में कुछ कुछ किसान इसको यूज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर खाद का कोई भी फसल होगा उसके लिए एक रिकमेंडेड डोज हम लोग बोलते हैं, तो एक रिकमेंडेड डोज बनाया गया है। अगर 1 हेक्टेयर धान की खेती होती है तो उसमें कितना हम नाइट्रोजन दें, कितना फॉस्फोरस दें, कितना पोटास डालें, तो उसमें एक मात्रा रहता है। लेकिन वो मात्रा को किसान शुरुआत में तो फॉलो कर रहा था, लेकिन समय के साथ जैसे मिट्टी की उर्वरता कम होते गई, तो वो एकदम उसका गलत तरीका से उसको इस्तेमाल किया। फिलहाल हम अंडमान निकोबार की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो बहुत कम मायने में खाद का उपयोग हो रहा है, लेकिन जो दूसरे स्टेट, जो राज्य है, बड़े बड़े स्टेट, पंजाब, हरियाणा, बाकी कुछ स्टेट जैसे है महाराष्ट्र वगैरह में, बहुत खाद की मात्रा जो है बहुत गलत तरीका से, बहुत हाई डोज खाद देने की बजाय हमारी मिट्टी जो है वह खराब हो चुका है, सॉयल हमारा बिगड़ चुका है, सॉयल का ऑर्गेनिक कार्बन खराब हो गई, सॉयल में मिट्टी के पानी पकड़ने की जो क्षमता, जल धारण करने का, वो खराब हो गई। सॉयल में बहुत सारी माइक्रोब्स जो हमारी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो उस चीज़ को सड़ाते हैं, उसको अपघटन करते हैं, उनकी मात्रा कम हो गई। तो चीज में इतना गलती हुआ जिसमें हमारे प्रोडक्शन भी हम पर हुआ है, और वो खाद मतलब मिट्टी जो है वो खराब हो चुका है लगभग। खेती बचाओ अभियान का सबसे बड़ा चीज है कि हम कम खाद, सही खाद और सही सलाह, ये तीन
1: बिल्कुल,
0: चीज।
1: यही जो संदेश है ये हम किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं।
0: जी।
1: सर, इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य के बारे में भी हम जानना चाहेंगे।
0: इस अभियान को हम उद्देश्य कर रहे हैं कई सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव को, कई सारी चीज़ को हम लोग उद्देश्य को लेके ही चला रहे हैं। जैसे मृदा परीक्षण करना है, सॉइल टेस्टिंग करना है, और सॉइल टेस्टर की मतलब आधारित ही हम उसको उर्वरक को या खाद को प्रयोग करने की सलाह देंगे। पहले उनकी सॉइल टेस्ट हो जाएगी, तो
1: जी
0: उसके बाद हम उनको एडवाइस करेंगे, रिकमेंडेड करेंगे कौन सा खाद कितनी मात्रा में उनकी फसल के हिसाब से हम देने के लिए। तो मृदा परीक्षण करने के लिए, सॉइल टेस्टिंग के लिए उनको इस प्रोग्राम के तहत हम सॉइल को भी कलेक्शन करते हैं, टेस्टिंग करने। तो संतुलित विवेकपूर्ण पोषक तत्व प्रबंधन, इसमें क्या होता है, जो बैलेंस फर्टिलाइजर होता है, कैसे हम बैलेंस दे के फर्टिलाइजर को यूज करें, कितना ऑर्गेनिक दे, कितना इनऑर्गेनिक दे, कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट दे, फसल के हिसाब से उसको कैसे बैलेंस यूज किया जाए, कोई ऐसे गलती ना होना। बिल्कुल ऑर्गेनिक मतलब जैविक खाद कुछ नहीं दे रहा है, रासायनिक देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है, और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जो अणु, जो सूक्ष्म जो तत्व होती है, जो हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, वो भी देखता गया सॉइल के, सॉइल जो है बढ़ती खेती बाड़ी की तरह वो भी कम होते जा रहे, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के भी बोलना पड़ेगा। तो इसमें एक अवेयरनेस उनकी एक जागरूक किया जाता है, हरी खाद की उपयोग में इसमें उपयोग को बहुत बटन दिया गया, जैसे ग्रीन मैन्यूरिंग बोलते हैं हरी खाद, ताकि धन चा सेने वगैरह ये अगर हम उसी धान की खेती या कुछ दूसरे खेती करने से पहले अगर लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारी नाइट्रोजन की जो भरपाई है उसमें मिल जाता है, उसको नाइट्रोजन कम देना पड़ता है, या हरी खाद देने से मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है। जैव उर्वरक या जैविक उत्पादक का, जैसे मान लीजिए जैव उर्वरक बहुत सारी बाय फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक जो है, या फिर बहुत सारी माइक्रोब्स है जो आर्टिफिशियल रूप से उस मिट्टी में छोड़ना होता है, जीवाणुसार जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर उस जैव उर्वरक को हम कैसे अगर मिट्टी में छोड़े तो वो क्या करता है, जाके मिट्टी में जो जीवाणु को मतलब वो एक जीवाणु हम इस मिट्टी में छोड़ रहे हैं तो वह जाके अपने घर बना लेता है, और वहाँ जो अपने घर बना के वो जो न्यूट्रिएंट जो हवा में है या मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट ऑलरेडी जो पोषक तत्व मौजूद है लेकिन वो पौधे तक नहीं आ पा रहा है, तो उसको जीवाणु जो है वो अपने अवेलेबल फॉर्म में पौधों को वो सप्लाई करती है। तो प्राकृतिक खेती का बढ़ावा इसमें एक और एक विषय आता है। प्राकृतिक खेती आजकल हम लोग एक देश में पूरा मुहिम चल रहा है, एक आह्वान चल रहा है कि प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाया जाए, ताकि नेचुरल खेती की जो तरीका है वो हम हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफी सारी प्रदर्शित लगाया जा रहा है, उसको ट्रेनिंग कराया जा रहा है, तो नेचुरल खेती हम कैसे करें, उसके प्रति उसका फायदा क्या है, तो उसमें भी एक हमारा जो अभियान के अंदर एक मुद्दा रहा है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ाया जाए, जल संरक्षण कराया जाए। जल संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो वो तो बहुत जरूरी चीज है खेती किसानी के लिए। तो यहाँ जैसे बहुत बारिश होती है तो अंडमान में फिर भी 2-3 महीना जो सूखा के समय होता है, जो धूप के समय होता है, वहाँ जल की कमी पड़ जाती है, जल फट जाती है, मिट्टी जैसे लगता है कि जल अवेलेबल नहीं होता है। कुछ कुछ एरिया हमारी मध्य उत्तर अंडमान में है जहाँ जल की बड़ी समस्या हो जाती है, या चाहे साउथ अंडमान की कुछ जगह है, तो उसमें जल संरक्षण हमारे एक बड़ा विषय रहता है। जल संरक्षण साथ मृदा संरक्षण, जो सॉइल जो है खराब हो जा रहे हैं, जब मृदा हमारी बह के कटाव हो जा रहा है, मिट्टी भी मतलब बारिश में चली जा रहा है, हमारी बहुत सारी जगह में सॉइल जो है डिस्टर्ब

0: हो चुका है अंडमान की, तो वो मट्टी चले जा रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसको कैसे बचाए, क्या तरीका से उस मट्टी को संरक्षण किया, मट्टी नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। तो इसमें हमारी एक बड़ी जागरूक किया जाता है किसान को, चीज को वैज्ञानिक तरीके से समझाया जाता है कि माटी और जल संरक्षण कैसे आप करें। मौसम, इसमें हम लोग और एक काम करते हैं, मौसम आधारित कृषि की सलाह देते हैं, हमारी एडवाइजरी होती है, क्रॉप एडवाइजरी कैलेंडर होती है, तो हम मौसम के आधारित कृषि की जो जो काम करेंगे उसमें भी इस कंपनी की सहायता लिया गया है। जलवायु आधारित कृषि भी हम लोग करते हैं, और बहुत सारे किसान की हितकारी जो योजना है, बाकी जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हम लोग इसमें मैडम जाते हैं कैंपेनिंग करने के लिए। हमारी उद्देश्य होता है किसान की समस्या को जानना, और हमारी जो सुझाव होता है उनको भी, जो भी हमारी इसी प्रोग्राम के अंदर जो भी हमारी उद्देश्य है उसको भी हम लोग उन तक पहुंचाते हैं।
1: बहुत जरूरी है किसानों को इन बातों की जानकारी देना।
0: जी
1: सर, खेत बचाओ अभियान जो 1 जून से 30 जून तक चलाया जा रहा है, क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये अभियान चल रहा है?
0: जी जी जरूर, मैं शुरू में मैडम बोला, ये अभियान बहुत अच्छा से चल रहा है। हमारी हमारे कृषि विभाग, जो हमारी आत्मा, जो एक जो हम कृषि विभाग के साथ ही वो जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जिसको बोलते हैं आत्मा, इनकी मेन एग्रीकल्चर के जो एक्सटेंशन पार्ट हमारी होते हैं कृषि में, जो प्रसार की प्रचार की जो व्यवस्था है वो आत्मा ही तरफ से किया जाता है। हमारे साथ कृषि ICR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, जो यहाँ पर अंडमान निकोबार में उनकी सेंटर है, जैसे सेंट्रल आईलैंड एग्रीकल्चर कैरी करके सब लोग जानते हैं, तो उसकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनकी सहायता से के कोलाबरेशन में 3-4 हम लोग मिल के ही इस प्रोग्राम को लगभग सारी जगह में हम लोग कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत दक्षिण अंडमान की कॉलोनीपुर पंचायत से और नमूना घर इसो गांव से शुरू हुई थी, और वो पूरा अंडमान निकोबार में सभी जगह में 1 महीना वाले चलने वाला ये प्रोग्राम है, चलेगा। जी
1: जी जी सर, अक्सर किसान जो है अधिक उत्पादन लेने के लिए जो है इस आशा में जो है ज्यादा खाद डाल देते हैं,
0: जी
1: क्या ये सही रहता है?
0: ना, ये बिल्कुल सही नहीं रहता, क्योंकि मैं शुरू से मैडम बोला कि एक पर्टिकुलर कोई भी फसल का एक रिकमेंडेड डोज होता है, अगर वो फसल जितना ही खा पाएगा उतना ही मिट्टी से वो खींचेगा, ठीक है, और बाकी सब वेस्ट हो जाएगा, बाकी वो पड़ा रहेगा। क्योंकि हम बहुत ज्यादा डालते हैं कि हमारी वो जानकारी नहीं रहता, हम लोग ज्यादा डालेंगे तो वो ज्यादा खींच लेगा या ज्यादा पैदा दे देगा, ऐसे नहीं है, वो नहीं उतना ही खा पाएगा जितना उसको जरूरत है।
1: जी जी
0: जी ये गलत है, इसको इसीलिए बैलेंस दे के चलना, और थोड़ा सा किसान को इस जानकारी रखना कि हम कौन सा फसल कर रहे हैं। मान लीजिए हम धान वाली फसल कर रहा है, धान को क्या चाहिए, धान को थोड़ा नाइट्रोजन टाइप का जो उर्वरक, तो नाइट्रोजन जो है वो उसको जरूरत है, क्योंकि उसमें पत्ती, उसका जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव, जो भी वेजिटेटिव जो ग्रोथ होता है, पत्ती बनेगा, पत्ती में हरापन आएगा, उसका अच्छा से स्ट्रांग होगा, उसका पिलर वगैरह ठीक से देगा, उसमें डाल मतलब उसका ब्रांचेस भी निकलेगा, तो उसको सारी जो भी करने के लिए नाइट्रेन, तो नाइट्रोजन की जरूरत है, नाइट्रोजन की खाद थोड़ा उसमें ज्यादा चाहिए, ठीक है, और बाकी जो फल आएगा उसमें पटास की ज्यादा मात्रा जाना पड़ता है, उसके सही समय से उसको धान का पकवान की, धान को सटीक सलीड करने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए जो बैलेंस चाहिए पटास की जरूरत है, DAP की जरूरत है, इस तरह हर चीज को थोड़ा किसान अगर फसल के हिसाब से किसको क्या टाइप का खाद ज्यादा जरूरत है, तो हमारी समय समय पर ट्रेनिंग होता है, हम लोग बोल देते हैं कि किस फसल के लिए क्या डोज है, वो डोज उनको लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जी मैडम,
1: नहीं देना चाहिए जितनी उसको
0: जरूरत
1: है।
0: जी जी
1: चलिए सर, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन या
0: जी,
1: INM क्या है?
0: हाँ, ये जो INM मैडम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेज, एक पोषक तत्व की जो प्रबंधन करते हैं हम, यही कोशिश किया जाता है कि खाली केमिकल फर्टिलाइजर दे के खेती ना करें, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए, किसान की आर्थिक इनकम के लिए, या फिर जो फसल की जो जरूरत है उसके लिए सही, क्योंकि इसको हम लोग एकीकृत इसीलिए किया गया है कि किसान का चीज भी हो जाए, अच्छा से प्रोडक्शन भी ले ले, और मिट्टी भी बचे, पर्यावरण बचे, सब कुछ सुरक्षित रहे, तो इसमें उद्देश्य यही होता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को इंटीग्रेशन करने के लिए। जैसे मान लीजिए मिट्टी की उर्वरता बनी रहना चाहिए, हम ऐसे नहीं है कि मिट्टी को खाद दे दे के इतना हार्ड बना लिए, अब मेनलैंड का यहाँ तो फिलहाल वो प्रॉब्लम नहीं है, तो मेनलैंड में जाओगे तो वहाँ ना आपका जो भी एग्रीकल्चर की जो पातू कुदाल जो भी वो टूट जाती है, उसको मिट्टी खोद नहीं पाते, इतना हार्ड पत्थर की तरह का लेयर बन चुका है, केमिकल फर्टिलाइजर देने के बाद ना वो एक पत्थर का लेयर हो जाए, पड़े पड़े रहते हैं मिट्टी में, वो तो वहां तो इतना बारिश नहीं होते अंडमान, तो इसलिए वहां कहां जाएगा, वो ऐसे ही मिट्टी के ऊपर पड़ा रहता है, तो एक समस्या बन जाती है। तो इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को इंटीग्रेशन करने की मतलब यही होता है कि हमारी सारे चीज को, उत्पादन, मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण और फसल की गुणवत्ता, ये सारा चीज को मेंटेन करने के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं। जी
1: जी प्राकृतिक खेती को इस अभियान में किस प्रकार शामिल किया गया है सर?
0: जी मैडम, प्राकृतिक खेती ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट के मोड में हमारी डिपार्टमेंट कृषि विज्ञान केंद्र या जो भी एग्रीकल्चर रिसर्च संस्था है यहाँ, तो उनके पास भी प्रोजेक्ट चल रहा है, लगभग 3-4 साल पहले इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, आज लगता मुझे ये तो 4th या 3rd साल चल रहा है इस प्रोजेक्ट की, तो उसमें हम लोग किया गया है बहुत सारी

0: किसानों को हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट के मोड में, सारा अंडमान निकोबार प्रैक्टिकृत अभी तक नहीं हो रहा है, कुछ कुछ किसान को हम लोग उसमें जुड़े हुए हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रदर्शित करा जा रहा है, जैसे यहाँ फरारगंज में है, बाराटांग में है। देखिए प्राकृतिक खेती इसी एरिया में हम लोग चुन के कर रहे हैं कि जो एरिया में पहले खाद की मात्रा कम यूज होती थी, जो भी वहाँ के लोकल किसान थे वो खाद ज्यादा प्रयोग नहीं करते थे तो उनको पसंद नहीं था, या उनकी जैसे बाराटांग पूरा बड़ा क्षेत्र रहा हमारी, उसमें जो खेती बाड़ी होती है उसमें बहुत कम खाद की, जो हमारी रांची कम्युनिटी के किसान भाई है वो लोग करते थे, तो उसी सब एरिया को हम लोग लेके ये प्राकृतिक खेती के अंदर उसको ले रहे हैं और उसका प्रदर्शित, उसका प्रशिक्षण, उसका फील्ड में ऑलरेडी परीक्षण, उसका सब चल रहा है।
1: जैसे कि आपने पहले बताया कि कृषि विभाग के द्वारा इस अभियान में और भी विभाग भाग ले रहे हैं, वो कौन कौन से विभाग है?
0: जैसे मैंने मैडम बताया, इसमें हमारी बहुत सारी, हमारी जो केवीके है, जो इस अंडमान निकोबार में 3 केवीके है, 3 डिस्ट्रिक्ट में, निकोबार केवीके, मिडिल और नॉर्थ अंडमान केवीके निम्बुडेरा, और जो केवीके पोर्ट ब्लेयर में है साउथ अंडमान की सीपी घाट में जो केवीके है, तो इस सब मिलके हमारी इस प्रोग्राम को रूपरेख बनाया गया है। हमारे साथ पंचायत जुड़े हुए हैं, किसान की जो उत्पादक संगठन एफपीओ है वो भी जुड़ा हुआ है, हमारे साथ कोऑपरेटिव ग्रुप जितना भी है वो भी है, हमारी एसएचजी ग्रुप है, तो हम लोग को इस सबको एक लेके एक अभियान कर रहे हैं मैडम, क्योंकि अकेला तो ये नहीं हो पाएगा, ताकि जागरूक जहाँ की बात होती है तो वहाँ की टीम की जरूरत पड़ती है।
1: इस अभियान में पंचायतों और किसान मित्रों की क्या भूमिका है? आपने कई अवेयरनेस प्रोग्राम
0: जी जी
1: किए
0: जी
1: हैं
0: जी
1: अभी।
0: किसान मित्रों मैडम ऐसे पोस्ट है जो एकदम प्राइमरीली किसान के साथ ही जुड़े हैं, एक किसान ही हमारा किसान मित्र होता है, कहीं बाहर से नहीं आता है,
1: जी
0: उसी गांव का, उसी लोकल एरिया का एक किसानी करने वाला आदमी ही किसान मित्र होता है, तो वो हमारी खबर को बहुत अच्छा से उनकी लोकल भाषा में, उनकी लोकल मतलब उनकी जो संपर्क है उस एरिया में, तो वो पहुंचाता है हमारे डिपार्टमेंट को चीज को, हम लोग भी बोलते हैं लेकिन उसकी बात को ज्यादा जोर दिया जाता है, ताकि वो हमारे साथ कोऑपरेट करे, हमको सारा चीज को, जो हमारी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, जो पॉलिसी है, जो अभियान है, जो मुहिम है, तो सब चीज को वो अच्छा तरह से पहुंचाए, तो उसकी एक बड़ी भूमिका है हमारे किसानों मित्रों की।
1: खेत बचाओ अभियान के तहत जो है किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाती है सर?
0: हाँ जी हाँ हाँ हमारी जो भी जितना भी सारी योजना है, जो अच्छा अच्छा योजना जो यहाँ इम्प्लीमेंट हो पाता है, तो उसमें पीएम किसान जो जन है, जो प्रधानमंत्री की जो किसान जो आर्थिक सहायता मिलता है किसानों को 6,000 रुपया पर साल, तो उसको भी दिया जाता है, फसल बीमा की जो भी योजना है उसमें भी जानकारी दिया जाता है, और हमारी, मेरे को एक चीज आपके माध्यम से कहना है, फसल बीमा में हमारे दीपों के किसान बहुत थोड़ा सा पीछे पड़े हुए हैं, उनको थोड़ा इस प्रोग्राम के माध्यम में आप लोग थोड़ा आगे आइए, आप फसल को बीमा जरूर कराइए, क्योंकि बीमा कराने से कुछ नुकसान नहीं है, आपका पैसा तो बीमा एकदम फ्री है, बीमा कुछ 50 रुपया ऐसे कुछ बांधना पड़ता है, तो इसमें करिए, ताकि आप मान लीजिए आपका फसल नष्ट हो रहा है, कुछ भी अचानक बारिश हो गया है, कुछ फ्लड हो गया, अभी भी 2-3 दिन पहले यहाँ मिडिल अंडमान में काफी फ्रॉड फ्लड की केस, मतलब बारी बाढ़ आ गया, उसको सर्वे कर रहे हैं हम लोग, तो इस तरह कर जो भी प्राकृतिक जो आपदा आएगी उस पर आप बच सकते हैं, कुछ तो पैसा आपको भरपाई उससे मिल जाएगा, तो फसल बीमा योजना के बारे में हम काफी जोर देना चाहता है, जो हमारे द्वीपों में किसान जो है इतना जागरूक नहीं है, आगे नहीं आ रहा है, तो हम आपको यही कहना चाहेंगे, आप लोग किसान भाई हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से फसल बीमा कराने के, जो आपके जो नियरेस्ट जो कृषि विभाग के जो भी कार्यालय होगा वहाँ थोड़ा जो संपर्क बनाए रखे, या डायरेक्ट हमसे संपर्क बनाए, कृषि यांत्रिकरण योजना मैडम है वो एग्रीकल्चर जो मशीनरी है, हम चाहते हैं कि हमारे दिन को दिन कृषि में लेबर की बड़ा इशू हो रहा है, कृषि में श्रमिक नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम किसी जितना मशीनरी कृषि में यूज हो तो उतना उनका समय बचेगा और मतलब कम लेबर में भी काम हो जाएगी, तो कृषि में एक बड़ी समस्या खड़ा हुआ है, कृषि में करने वाला आदमी नहीं रहे हैं, तो कृषि यांत्रिकरण का भी बात हो रहा है, इसमें प्राकृतिक खेती की हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, इस तरह जितना भी हमारे स्कीम है ये हम लोग उसकी चर्चा भी करते हैं जी।
1: किसानों को उर्वरकों के उपयोग के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: उर्वरक के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने मिट्टी को पहले पहचानिए, क्योंकि आप रह रहे हैं एक आइलैंड में, एक समुद्र के ऊपर, ये धरती एक अलग तरह का है, एक टापू है ये,
1: जी
0: इसको हम लोग बोलते हैं कि दुर्लभ धरती है, रेयर अर्थ, इस धरती के ऊपर अंडमान निकोबार एक दुर्लभ है, तो इसको मिट्टी को आप पहचानिए, ये मिट्टी किससे बना हुआ है, क्या इसका गुण है, इसकी मिट्टी को पहचान करके आपको सॉइल टेस्ट करना पड़ेगा, आपको हमेशा सॉइल टेस्टिंग करेंगे तो आपको एक रिपोर्ट आपके पास रहेगा, और सॉइल टेस्टिंग जो समय समय पे उसको अपग्रेड करते रहना, ऐसे नहीं कि 10 साल पहले किया था वही अभी चलेगा, नहीं, उसको लेटेस्ट रिपोर्ट चाहिए,
1: समय समय पर,
0: तो समय समय पर उसको करेंगे तभी आपको रिकमेंडेड डोज मिलेगा कि हमारी मिट्टी में कमी क्या है, कहाँ यहाँ कमी है, तो क्या ऑर्गेनिक मैटर का कमी हो रहा है, क्या नाइट्रोजन की कमी है, या कुछ अणु मतलब न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, जो जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म तत्व जो होता है, जो वो भी मान लीजिए आयरन भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, मॉलिब्डेनम हो सकता है, बोरन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, जो फसल के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिंक भी हो सकता है, धान की खेती में जिंक वगैरह देना जरूरत है, तो उसी हिसाब से

0: इसको समझिए, तभी आपकी डोज जो है आप उसके हिसाब से आप प्लान करिए कि कितना खाद मुझे देना है। लेकिन खाद पूरा रासायनिक के पीछे ना जाके, हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक मैटर है,
1: जी
0: हमारी बगीचा में बहुत सारी कचड़ा मिलेगा, बहुत सारी सूखा पत्ते मिलेगा, बहुत कंपोस्ट मिलेगा, गोबर होगा तो गोबर मिलेगा, हमारे गोबर अलग अलग अलग तरह का, जैसे कोई सुअर पाल रहा है, कोई मुर्गी पाल रहा है, कोई बकरी पाल
1: बकरी
0: रहा है,
1: पा
0: उनकी जो भी
1: जी
0: जो गोबर होता है, जो उनकी लिटर होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। घर का जलाए चूल्हा में जो हम लोग राख ही निकालते हैं, उसको भी इतना अच्छा सा पटास देता है वो ना। हमारे पास केला बगीचा है, उसका कचड़ा को लेके पटास भी कर सकते हैं। तो मतलब मेरे को यही कहना, आपके पास ऑर्गेनिक मैटर सफिशेंट है, थोड़ा जिंदा बली का पत्ती आप जमीन पे डालिए, थोड़ा धनचा खेती करिए, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तुरंत आप कूद मत जाइए, मुझे खाली डीएपी यूरिया देके खेती करना है, ये गलत है। आप पहले आपके पास जो भी रिसोर्स है उसकी बात करके थोड़ा सा केमिकल देंगे, क्योंकि मट्टी को हम लोग बिगाड़ चुके हैं। मट्टी को
1: जी
0: बिगाड़ के मट्टी में कितने दिन से खेती हो रहा है, और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट चले जा रहा है सब। ऑर्गेनिक मैटर के साथ थोड़ा सा आप देंगे तो ये चीज जो है बहुत अच्छा से देखिए। कुछ किसान बोलते भी है, सर हम लोग जो शुरुआत में आए थे, जमीन हमको जमीन मिला गया था जब यहाँ सेटलमेंट शुरू, वहां कुछ भी लगाते थे, गाड़ते थे, हो जाता था। तो आप उसको कंपेयर करिए, आप एक वर्जिन सॉइल में आके पैर रखे थे,
1: जी
0: जिसको जंगल सफाई करके आपको मट्टी दे दिया गया था, आप कुछ भी डालोगे तो हो जाएगा। लेकिन आज वो सेम चीज क्यों नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा अपने मानस का मंथन करिए, सोचिए कि हम एक ही जमीन से दिन को दिन लगातार कई साल हो गई, 50-60 साल के ऊपर हो गया, तो हम उसको खेती करते जा रहे, उसमें तो न्यूट्रिएंट कम हो रहा है, तो उसको न्यूट्रिएंट की दोबारा कैसे हम भरपाई करें।
1: भरपाई करें।
0: उसका भरपाई का खाली एक रासायनिक उद्देश्य नहीं है, इसमें थोड़ा सा पेशेंस की, धैर्य की जरूरत है।
1: इस अभियान के दौरान सर किसानों को क्या-क्या गतिविधियां और देखने को मिलेंगी?
0: जी मैडम, इसमें ना हमको गतिविधियों में हम किसान जागरूक की शिविर कर रहे हैं, ग्राम स्तरीय पे बैठे कर रहे हैं, खेती प्रदर्शित भी करा जा रहे हैं, बहुत सारी डेमोस्ट्रेशन हो रहा है, मुदा संरक्षण कर रहे हैं हम लोग, मुदा मतलब सॉइल टेस्टिंग के लिए उसको सैंपल हम कलेक्शन कर रहा है।
1: जी
0: जिसको अगर सॉइल देना होगा, मैं किसान भाई को बोलूंगा इस प्रोग्राम के तहत आप लोग सॉइल सैंपल अपने जमीन से दे दीजिए, हमारी जो आत्मा की टीम है या हमारे कृषि विभाग के जो भी इसी खेती बचाओ अभियान में जुड़े हुए हैं, उनको आप सैंपल हैंड ओवर करिए। हमारे यहाँ गोलघर में सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी है, वो यहाँ परीक्षा हो जाएगा, उसके बाद आपको रिपोर्ट दे दी जाए। तो आप प्लीज आप उसको सॉइल हैंड ओवर करिए। हरी खाद हमारी प्रदर्शित हो रहा है, हमारी जो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप, उसमें हम मेनलैंड से अभी बीज आ चुका है, हम धनचा वगैरह जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, हमारे सारे डिपो में धनचा का बीज अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा बारी बारी करके ला रहे हैं, एक साथ नहीं हो पाया है, तो धनचा आप लीजिए, थोड़ा जमीन पे धान की जमीन उसको छिटकी है, थोड़ा जैसे भी धनचा आपका बड़ा हो जाएगा उसको हल चला दीजिए, ताकि वो एक हरी खाद आपकी जमीन पे मेंटेन होकर रहेगा, आपको आयरन यूरिया देने का जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर हरी खाद करके आपने धान कर दिए, मुझे नहीं लगता इसको यूरिया की जरूरत
1: जी
0: होगा।
1: जी
0: और तो पंचायत स्तरीय में कार्यक्रम हो रहा है मैडम, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हम लोग समय समय पर किसी को कुछ पैसा की जरूरत है तो क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती का भी तो चल ही रहा है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। इस तरह करके हमारा गतिविधि रहेगा, अभी तो 15 दिन भी नहीं हुआ है
1: नहीं हुए
0: और
1: जी।
0: ज्यादा समय अभी बचा हुआ है, तो हम 30 तक मतलब पूरा महीना इसको चलाएंगे, इस मुहिम को।
1: काफी कुछ आपने इस बारे में बताया, अंत में चलते चलते किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अगर किसान को और कुछ बोलना है, मैं तो यही बचाऊंगा, अपने मिट्टी बचाइए, अपने पानी बचाइए, संतुलित खाद दीजिए, मतलब खुद अच्छा से रहिए, स्वस्थ खाइए, तो देश बचेगा, किसान बचेगा, सब तब तभी जाके सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि किसान को हम लोग अन्नदाता बोलते हैं, और
1: जी
0: वो अन्न को अगर सही से प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, अगर अन्न को वो गलत तरीके से उगाएगा, तो उसको जो भी खाएगा बीमार रहेगा।
1: बिल्कुल
0: तो ठीक है, तो संतुलित सब चीज करे, बैलेंस दे, और पर्यावरण के बारे में सोचे, क्योंकि किसान कुछ कुछ गलत डिसीजन भी ले चुका है, तो वो हम दूसरे किसी प्रोग्राम में बोलेंगे। तो हम यही कहेंगे किसान को, जी आप अपने जगह को पहचानिए, जो यहाँ कर रहे हैं, जो भी आपको आगे के करने वाला है, थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीका से सोचिए कि ये साइंटिफिकली होना चाहिए, पर्यावरण के लिए सही होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक गलती के पीछे ये कई पीढ़ी भुगतना पड़ता
1: जी
0: है।
1: जी
0: ऐसे कुछ गलती मत करिए जिसको हम आगे कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे आगे
1: बिल्कुल,
0: पर, मेरे को यही कहना मैडम,
1: यानी काफी
0: धन्यवाद।
1: सुधार की जरूरत है।
0: जरूर जरूर, जी,
1: और खेत बचाओ अभियान के तहत आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी किसान साथियों को, और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बातचीत उन्हें अच्छी लगी होगी। आपने अपना कीमती समय दिया कार्यक्रम में आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बात, थैंक यू।
2: किसान साथियों, अभी आपने कृषि विभाग के निदेशक श्री देवाव्रत बसंतिया जी से की गई बातचीत सुनी, और बातचीत के माध्यम आपने जाना खेत बचाओ अभियान के संदर्भ में।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब

0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: परम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं और चखम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: किसान भाइयों, योग करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है, तो चलिए चर्चा करते हैं योग के संदर्भ में। किसान साथियों, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान यानी मेडिटेशन करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं मेडिटेशन और योग के संदर्भ में। योगा यदि मेडिटेशन के साथ किया जाए तो उसे मेडिटेशन योग कहते हैं। वैसे आप जानते हैं कि योग के दौरान अलग अलग आसनों के कारण बॉडी में मूवमेंट होता है, जबकि मेडिटेशन में ऐसा नहीं होता। मेडिटेशन यानी ध्यान लगाकर इंसान अपनी एनर्जी के जरिए किसी खास चीज़, आवाज़ या सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमेशा योग करने के बाद मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। चलिए आपको बता दें कि मेडिटेशन योग कैसे करें। एक आरामदायक और शांत माहौल में बैठें, सुखासन में बैठ जाएं, अपने रीढ़, गर्दन और सिर को एक सीध में रखें, दोनों आंखों की नज़र नाक की नोक पर लगाएं, नज़र को बिना हिलाए नाक के सिरे पर ध्यान लगाए रखें। कुछ देर इसी स्थिति व मुद्रा में रहकर दिमाग को विचारों से खाली करने की कोशिश करें। नियमित योग के अभ्यास से तनाव और शरीर में सूजन के स्तर में कमी आ सकती है, जिससे दिल स्वस्थ रहता है। कई अध्ययनों के अनुसार 45 से 60 दिनों तक प्रतिदिन 20 मिनट ध्यान करने से मस्तिष्क पर मापनीय प्रभाव पड़ सकता है। बेहतर फोकस और अधिक उत्पादकता से लेकर कम चिंता तक। हालांकि हर कोई अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है, इसलिए यह देखना जरूरी है कि आपके लिए क्या कारगर है। इसके लिए लंबे या छोटे स्तर आजमाना जरूरी है। किसान साथियों, अभी आपने योगा के संदर्भ में ये छोटी सी जानकारी हासिल की।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए अब आपको प्रश्न का उत्तर दे देती हैं, पर पहले हम प्रश्न दोहराते हैं। हमने आपसे पूछा था पनामा विल्ट किस पौधे की बीमारी है और हमने आपको तीन विकल्प दिए थे। पहला था केला, दूसरा पपीता और तीसरा नारियल। किसान साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है केले की। जी हाँ, पनामा विल्ट केले की बीमारी होती है। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथियों को इस बात की जानकारी थी और यदि नहीं तो इस प्रश्नोत्तर के माध्यम आपने इस बात की भी जानकारी हासिल कर ली होगी। अब किसान साथियों, हमारे विदा लेने का वक्त हो चुका है। हम आपसे लेना चाहेंगे अनुमति इस वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल और अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर और 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र हैं। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लगभग सभी जिलों में मध्यम गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 10:30:37 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यही समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्स विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 30वीं तिथि तदनुसार 20 जून सन 2026। सुबह के इस समय 5:28 और 33 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।